चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहां मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे हम? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो,
तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते है राधा का प्रेम, राधा का प्रेम कैसे जान पाओगे। उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार कृपा की भंडार नाम ही जिनका करुणामयी हो, ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है वो, भक्त नहीं है वो, साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम में है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका, भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

0: महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सुन जरा, चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: नहीं। ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती है, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब। मतलब भाई भूत भी फुल सैवेज मूड में है, पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा।
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते? अच्छा, तो तुम यहाँ पर रहने आए हो?
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देख मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: दोस्ती, प्यार, परिवार और एक डॉग जो लव स्टोरी का असली हीरो निकला। प्रेम एक बिंदास देवर, निशा एक शरारती साली साहिबा, दोनों की नोक झोंक मस्ती और आंखों ही आंखों में रोमांस चल रहा था।
2: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
1: पर ये कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं थी, ये थी संस्कार सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओजी फिल्म।
3: हम आपके हैं कौन?
2: ये मौसम का जादू है मितवा।
1: पिक्चर से लंबे गाने, दिल से दोस्ती, भाभी तेरा देवर दीवाना और प्रेम निशा का पहला पहला प्यार, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पूजा, जो प्रेम के भाई राजेश की पत्नी थी, एक ड्रामेटिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और फिर होता है संस्कार वर्सेस प्यार का महायुद्ध।
2: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
1: लेकिन राजरे की फिल्म में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश के लिए निशा का रिश्ता फिक्स होने वाला था, पर प्रेम का प्यार और टफी, हाँ वही लेजेंडरी डॉगी, हीरो बनकर बीच में आ जाते हैं। अब सवाल ये था, प्रेम सेक्रिफाइस करेगा या प्यार की होगी जीत? फैमिली ड्यूटी स्ट्रॉन्ग निकलेगी या दिल की सुननी पड़ेगी?
2: आपके
1: प्यार किया तो डरना क्या? एंड एट लास्ट निशा और प्रेम का प्यार जीत जाता है और फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे?

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: अनजाने अजनबी।
2: शादी सिर्फ शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
3: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का जो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और दूसरी तरफ हमारी पूनम, जो एक शर्मीली और सुशील लड़की जो प्यार को एक समर्पण समझती है। पहली नजर में शर्माना, घर वालों का आशीर्वाद और विवाह फिक्स।
4: सहरा से जाके घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानती हो क्या होगा?
5: क्या?
4: हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी।
2: राजश्री की पिक्चर में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की वाले नर्वस, लड़के वाले ओवर एक्साइटेड, पर जब किस्मत ने कठिन इम्तिहान दिया तब प्रेम ने दिखाया कि असली प्यार सिर्फ सुंदरता से नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने से होता है।
1: तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है।
2: और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है विवाह मूवी की, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ शादी के मंडप तक ही नहीं, जिंदगी भर साथ चलने का वादा होता है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा। मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।

0: राज, मस्ती, मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।
1: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा।
0: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
2: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाऊजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
3: जा सिमरन, जा, जा जीले अपनी जिंदगी।
0: इसलिए कहते हैं

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो इंतजार करती हैं वक्त का, एक कहानी मोहब्बत, धोखा और एक आत्मा का इंतकाम। ये कहानी है 1920 की।
2: तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं।
1: अर्जुन सिंह राठौड़ एक आर्किटेक्ट जिसने फैमिली के खिलाफ जाकर लीसा से शादी की और प्यार उन्हें एक वीरान हवेली तक ले आया।
3: इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है?
1: जो सिर्फ एक हवेली नहीं, एक मनहूस कहानी का गवाह भी थी। उस हवेली में आते ही अजीब हादसे शुरू होने लगे।
4: कौन है?
1: लीसा को अजनबी चेहरे दिखने लगे। हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। एक भयानक साया उसके आसपास मंडराने लगा।
4: इस घर में कुछ है, कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ।
1: और फिर लीसा को एक तस्वीर मिलती है गायत्री की, और उसके बाद आता है एक सच। ये कहानी सिर्फ प्यार नहीं, इंतकाम की भी थी।
5: लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा, वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुँची है।
1: वहाँ के प्रीस्ट ने ये चेतावनी भी दी थी कि मोहन कांत की आत्मा वापस आई है लीसा के रूप में। और फिर आती है अमावस की रात, लीसा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर आखिर जीता सिर्फ एक ही, सच्चा प्यार। अर्जुन ने लीसा को आजाद किया और वो आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में समा गई। मोहब्बत हो या हवेली, पुरानी हो तो संभाल के रखना, और हाँ, अगले जन्म के वादे सोच समझ के करना। क्या पता कौन सीरियसली

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे,
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
2: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
3: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
2: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
4: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
1: चली गई?
4: भाग गई।
1: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
2: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता।
5: बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल।
2: पर एलिजे के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है, लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
6: अरे वाह, बड़े वफादार है आप यहाँ, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकलते।
2: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियाँ अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बात से पूरी होती।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
5: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई। दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़े कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके

0: हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
1: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
0: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जंग।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आ तो चली।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक

0: 89.6 FM पर सुन रहे हैं आप पोषण की पाठशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, जहां हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और सही पोषण की। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो शुरुआती दौर में एक नया फेज शुरू होता है, यानी पहला खाना। ये वो टाइम होता है जब माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को सॉलिड फूड देना जरूरी माना जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद सवाल ये उठता है, पहला खाना क्या होना चाहिए, कैसे शुरू करें और क्या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। इन्हीं सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेनू खुराना, जो कि आज हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और बच्चों के सही पोषण पर अपने एक एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ शेयर करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेनू आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी क्यों नहीं होता, और अगर बात की जाए पहले खाने की, तो पहला खाना शुरू करना क्यों जरूरी होता है। एंड साथ ही अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो इसका सिंपल मतलब क्या है जो हर पेरेंट आसानी से समझ सके।
1: हाँ अंजलि, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा आपने पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने कंप्लीट होने पर ही क्यों स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली 6 महीने तक बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरत जो है वो है, प्रतिदिन उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो इसीलिए उसकी न्यूट्रिशनल जरूरत भी बढ़ जाती है। केवल ब्रेस्ट मिल्क इस समय काफी नहीं होता, तो 6 महीने के बाद ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, ध्यान रखिए, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो हम सॉफ्ट फूड या सेमी सॉलिड फूड देते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे लिसनर्स तक ये इतनी इम्पोर्टेंट बात पहुंचाने के लिए। जैसे कि अभी डॉक्टर ने क्लियर किया कि 6 महीने के बाद सिर्फ दूध नहीं बल्कि सही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है जितना कि बच्चे के लिए माँ का दूध, इसलिए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेनु खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का पहला खाना क्या होना चाहिए, साथ ही ये खाना घर पर बना हो या फिर मार्केट पैक्ड फूड भी चल सकता है। अक्सर देखा गया है पेरेंट बच्चों को बिस्किट रस्क या फिर पैक्ड फूड खिला देते हैं क्योंकि वो इजी ऑप्शंस होते हैं। तो ये कितना सही है, कितना हार्मफुल है एक बच्चे के लिए। साथ ही बात की जाए नमक और चीनी की, तो कब से देना चाहिए, कब सही समय है देने का, और अक्सर देखा गया है कई बार बच्चे खाना नहीं खाते, इस केस में पेरेंट को क्या करना चाहिए।
1: अंजलि, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो न्यू पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि खाना सेमी सॉलिड होना चाहिए, दूसरी बात खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, और तीसरी बात ये है खाना जो है वो कैलोरी डेंस होना चाहिए। जैसा कि हमने बात किया कि खाना सेमी सॉलिड या सॉफ्ट होना चाहिए, खाना ना तो बहुत लिक्विडी हो और ना ही बहुत गाढ़ा, ताकि बच्चा उसको आराम से खा सके। और जो हमने बात की कि खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर खाना घर पर बन रहा है तो आपको मालूम है कि वो सेफ है, हाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस है और बिना प्रिजर्वेटिव के है। सो बच्चे को इस समय पर सेफ और हाइजीनिक खाने की जरूरत है। और तीसरी बात है कि खाना कैलोरी डेंस हो, ताकि उसकी छोटी सी भूख में उसकी न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी हो सके। कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे दाल अच्छे से पकाकर मैश करके देना, चावल को पकाकर उसको मैश करके खिला सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, और किसी भी अनाज का दलिया बनाकर दे सकते हैं, सब्जियां पकाकर दी जा सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप घर का बना हुआ खाना दें बच्चे को, ना कि मार्केट के पैक्ड प्रोसेस्ड फूड दें। बच्चे को एक साल तक चीनी और नमक की जरूरत नहीं है, अभी वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम शुरू कर रहे हैं उसके टेस्ट से फेमिलियर हो रहा है, तो नमक और चीनी कभी कभी ओरिजिनल टेस्ट को ओवर पावर कर लेते हैं और वो असल खाने को समझ नहीं पाता है। मैं यहाँ एक चीज स्पेशली कहना चाहूंगी, प्लीज क्विक फिक्सेस अवॉइड करिए। अगर बच्चा मील रिजेक्ट कर रहा है या वो रो रहा है, तो बिस्किट या पैकेज स्नैक्स देना उस मोमेंट में आपको इजी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की प्रेफरेंस वही खाना बन जाती है और वो उसकी हैबिट तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और फिर नॉर्मल खाना देना और डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बजाय जो फेमिलियर फूड है, जो वो पहले एक्सेप्ट कर चुका है, वही खाना दीजिए। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टेक्सचर उन्हीं खानों के साथ ट्राई कर सकते हैं। क्विक सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस फूड की बजाय फेमिलियर खाना दीजिए, शॉर्टकट ना अपनाएं।
0: जी डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की बातों से एक बात जरूर क्लियर हुई है, घर का बना सिंपल और फ्रेश खाना ही सबसे बेस्ट होता है। सो जितने भी पेरेंट्स आज हमें सुन रहे हैं, प्लीज बिस्किट और पैक्ड फूड को इग्नोर कीजिए। अगर आप अपने बच्चे का पहला खाना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखिए जो आज हमें डॉक्टर बता रहे हैं। साथ ही घर का बना खाना सबसे बेस्ट होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी घर के बने खाने को ही दीजिए। इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए खाने की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। क्या एक ही तरह के खाने को हमेशा बच्चे को खिलाया जाए या फिर बच्चे के खाने में वैरायटी इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। इसी के साथ बात की जाए अगर कंसिस्टेंसी की, तो किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए खाने की, ज्यादा पतला, ज्यादा गाढ़ा या बिल्कुल पेस्ट जैसा जो बच्चा आराम से खा सके। ये कई तरह के डाउट्स हैं जो हर पेरेंट्स के मन में रहते हैं। आज हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। इसी के साथ डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर बच्चा शुरुआती दौर में खाना खाना शुरू कर रहा है तो दिन में कितनी बार खाना खिलाएं 6 से 8 महीने के बच्चे को?
1: हाँ अंजलि, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का पर्पस बस बच्चे का पेट भरना नहीं है, बल्कि उसे न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट देना है। अगर हम बेबी को बार बार एक ही तरह का खाना देते हैं, जो कि कुछ माओं को बहुत आसान लगता है, तो उसकी सारी न्यूट्रिशनल जरूरत उस खाने से पूरी नहीं होगी। इस एज में उसको कई तरह के विटामिन्स चाहिए और आयरन और जिंक जैसे कई मिनरल्स की जरूरत है। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए धीरे धीरे हमें उसके डाइट में अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स इंक्लूड करना जरूरी होता है, जैसे हरी सब्जियां हैं, नॉर्मल सीजनल सब्जियां, दालें, लेग्यूम्स, रूट ट्यूबर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एज अप्रोप्रिएट नट्स और सीड्स, ऑफ कोर्स इन पाउडर फॉर्म एंड वेल कुक्ड फूड। 6 से 8 महीने के बच्चे को 1 टेबलस्पून दिन में 2 बार हम दे सकते हैं और धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हम वैरायटी की बात कर रहे हैं खाने की, जो हम खाने में वैरायटी ऐड करने की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जितनी वैरायटी हम इंक्लूड करते हैं, उतना बच्चे की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है अलग अलग तरह के खानों के लिए, और उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में ध्यान रखें, खाना हमेशा सिंपल और सॉफ्ट होना चाहिए। अगर बात की जाए क्वांटिटी की, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ ही हमें बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका बेबी अडेप्ट करता है खाने की हैबिट को, उसी तरह से क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा देनी चाहिए। अगर इस तरह से इनिशियल डेज में रूटीन सेट किया जाता है, तो एक बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है खुद को खाने के साथ इंट्रोड्यूस कर पाना। इसलिए कहा जाता है कि हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना शुरुआती दौर में बहुत जरूरी होता है। फिलहाल वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का, फिर से लौटेंगे पोषण की पाठशाला में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो ये बताइए न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन या फिर गुड फैट्स। साथ ही जो पेरेंट वेजिटेरियन है वो कैसे इंश्योर करे कि प्रॉपर प्रोटीन वो अपने बच्चे को दे सके, जैसे कि दाल का पानी या फिर दाल मैश कर या फिर कोई सब्जी। किन तरह के ऑप्शंस को वो इंक्लूड कर सकते हैं बेबी के खाने में, सो दैट कि प्रॉपर प्रोटीन एक बच्चे को दिया जा सके।
1: बढ़ते हुए बच्चे के लिए हमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन और एनर्जी की जरूरत है, तो एक कोई पर्टिकुलर खाना लेकर हम नहीं चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हरी सब्जियां हों, सीजनल सब्जियां हों और दालें, लेग्यूम्स हैं। अंडा और दूध हम 8 महीने कंप्लीट होने पर शुरू कर सकते हैं। जो लोग केवल वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए भी बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन देना बहुत आसान है। अगर हम अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स में से खाना पिक करके कॉम्बिनेशंस में बनाते हैं, जैसे आप खिचड़ी दे रहे हैं तो उसमें दाल जा रहा है और दलिया है तो उसमें दूध चला जाएगा। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है और इस समय उसे आयरन और जिंक जैसे मिनरल बहुत बहुत जरूरी हैं, ताकि उसकी ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। उसको हेल्दी फैट्स चाहिए क्योंकि इस समय पर उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है बॉडी की, और प्रोटीन्स ऑफ कोर्स हमें, उसकी मसल्स बन रही हैं, वो बड़ा हो रहा है, इसलिए प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत है। तो हमें कोशिश करना है कि हम दाल है, लेग्यूम्स है और खिचड़ी बना रहे हैं अगर हम, तो उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और बादाम को पीसकर भिगोकर वो हम खाने में ऐड कर सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो हम थोड़ा सा तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको भिगोकर पीसकर पकाकर ही देना है। देखिए, इस स्टेज पर बेबी को सिर्फ पेट भरना नहीं है, उसको सही तरह से ग्रो भी करना है, इसलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। वेजिटेरियन घरों में भी ये इजीली मैनेज हो सकते हैं। दाल, खिचड़ी, सब्जी मैश, थोड़ा सा घी ऐड करके हम दे सकते हैं। अलग अलग तरह के अनाजों का हम दलिया बना सकते हैं, उसमें कुछ नट्स और सीड्स को हम भिगो कर पीस कर ऐड कर सकते हैं। इस समय जो बच्चे की न्यूट्रिशनल ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। और एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि हमें दाल देनी है या दाल का पानी देना है। तो अगर हम बच्चे को दाल का पानी देते हैं, उसकी छोटी सी भूख जो है वो दाल के पानी से भर जाएगी, लेकिन अगर हम दाल को अच्छे से पकाकर मैश करके वो बच्चे को खिलाते हैं तो उन्हीं 2 चम्मच में उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है जो कि उसकी इस समय की जरूरत है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया शुरुआती दौर में सिर्फ बच्चे का पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बच्चे को सही खाने के साथ सही न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है, जैसे कि सही तरह से आयरन देना, गुड फैट्स देना, प्रोटीन देना, ताकि एक बच्चे की सही ग्रोथ, सही डेवलपमेंट और एक सही फाउंडेशन बन सके। सो माय डियर पेरेंट्स, बस इन्हीं बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपका मोटिव सिर्फ बच्चे को खाना खिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को सही पोषण वाला खाना खिलाना है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, जब बात की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, जहाँ बच्चे को शुरुआती दौर में इंट्रोड्यूस किया जाता है खाने से, सो ऐसे में कई बार देखा गया है कि डाइजेशन इश्यूज, एलर्जीज और सेफ्टी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो ऐसे में हर नया खाना इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या गैप देना चाहिए, साथ ही कितने दिन का गैप रखना चाहिए अगर हम बच्चे को एक खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर बात की जाए फूड एलर्जीज की, तो फूड एलर्जी के अर्ली साइन क्या होते हैं जिनको पेरेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, घर में सफाई और हाइजीन का खाने से क्या कनेक्शन है सो दैट की बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो।
1: ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल सी बात। जब हम बच्चे को कोई नया खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे उस खाने को फेमिलियर होने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए ये एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोई नया खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक रूल लेकर चलें कि एक समय पर आप एक ही खाना उसे खिलाएं और 2-3 दिन के गैप के बाद हम नया खाना उसको टेस्ट कराएं। जैसे आज हमने उसको मैश दाल दिया, तो 3rd या 4th डे पर जाकर हम उसे मैश राइस देंगे, फिर 3 दिन वही देकर और 4th दिन पर हम उसको खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं या दलिया बनाकर दे सकते हैं। इससे आपको समझ आता है कि बेबी को उस फूड की टॉलरेंस है या बच्चे को भी उस खाने का टेस्ट समझ में आता है। खाना बच्चे को सूट नहीं कर रहा है तो उसे डेफिनेटली उससे रिएक्शन होगा। अब उसके सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी या आंखों से पानी बह रहा है बच्चे के, कभी कभी स्किन पर रैश हो जाता है या बच्चा वॉमिटिंग्स करता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे के लिप्स में स्वेलिंग हो सकती है या फेस पर स्वेलिंग हो सकती है। ये सब साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि बच्चे को फूड एलर्जी हो सकती है। तो इस बारे में आप थोड़ा ध्यान दें और बच्चे को डॉक्टर से मिलवाएं। बच्चा इस समय ग्रो कर रहा है, वो नया खाना एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है इस टाइम पर, तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे के आसपास और खाना खिलाने के वक्त भी हम सफाई का बहुत ध्यान रखें। खाना बनाते समय और उसको खिलाते समय हमारे हाथ साफ हों, बर्तन साफ हों, घर का ताज़ा बना हुआ खाना उसको दें और बॉटल फीड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में। सो जहाँ तक हो सके बॉटल फीड ना दें।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें देने के लिए। डॉक्टर ने हमें ये बताया एक छोटी सी लापरवाही भी बेबी की हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए हाइजीन और पेशेंस दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर पेरेंट्स, इन सभी छोटी छोटी बातों का जरूर ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु खुराना, जहां आज हम जान रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो इस दौरान फोर्स फीडिंग क्यों हार्मफुल हो सकती है एक बच्चे के लिए, साथ ही जितने भी वर्किंग पेरेंट आज हमें सुन रहे हैं, सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे मैनेज की जा सकती है, उनके लिए कुछ ऐसे इजी ऑप्शंस जो आप बताना चाहें।
1: फोर्स फीडिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है नॉर्मली हर घर में ही, और पेरेंट्स को बहुत नेचुरल लगता है क्योंकि वो बच्चे को अच्छे से पेट भर के खाना खिलाना चाहते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं है और हम उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं तो बच्चा खाने को प्रेशर के साथ एसोसिएट कर लेता है, धीरे धीरे खाने को डिसलाइक करना शुरू कर देता है, उसे एज ए पनिशमेंट समझने लगता है और खाने से बचना चाहता है। इसलिए बेबी के हंगर क्यूज को समझें, इसे हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं। माने आप देखें कब वो खाना मांग रहा है या उसको कितनी भूख है और कब वो खाना नहीं खाना चाहता। तो अगर हम बात करें वर्किंग मदर्स की, शुरू शुरू में उनको ये बहुत टफ लगता है, लेकिन काउंसलिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ बहुत इजी बनाया जा सकता है इसको। इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे प्लानिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके पहले से रख लेते हैं, और या फिर फैमिली फूड जो हम कुक कर रहे हैं उसमें एक या दो चीजें हम ऐसी बनाते हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। सिंपल घर का खाना हम बच्चे को दे सकते हैं आराम से। प्लानिंग में जैसे हमें अगर मालूम है कि हमें दिन में उसको दो फीड देने हैं, या जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो फीड बढ़ता जाएगा, तो वो छोटे छोटे पोर्शंस आप प्रेप करके और कुक करके रख सकते हैं, और जो भी केयर गिवर है बच्चे का उसको आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है इसमें।
0: सो डॉक्टर ने आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ फीडिंग करनी है, और जितने भी वर्किंग मदर आज हमें सुन रही है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप बैलेंस बना सकते हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज डॉक्टर ने हमें बताए हैं, इन सभी ट्रिक्स एंड टिप्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को इजी बनाइएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेकर। सो डॉक्टर, अगर आप एक लाइन में पेरेंट्स को मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा जो 6 महीने के बाद अपने बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं?
1: अंजलि, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन नहीं मानती, ये एक बिहेवियरल ट्रांजिशन भी है। सो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का टाइम एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इस फेज में बच्चा टेस्ट और टेक्सचर से फेमिलियर होता है फूड के, वो अपनी भूख को और फुलनेस को समझता है, ईटिंग एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है। इसलिए फीडिंग को सिर्फ कितना खाया से जज नहीं करना है, हमें उस प्रोसेस पर फोकस करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। बच्चे को हमें रिस्पॉन्सिव फीडिंग कराना है, क्यों समझना है कि बच्चा खाना मांग रहा है या अब उसको भूख नहीं है। बच्चे को कभी भी ओवर फीड ना कराएं और ना ही उसकी भूख को नेग्लेक्ट करें। प्रेशर फीडिंग बिल्कुल अवॉइड करें। खाते समय बच्चे के आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखें, उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, टीवी फोन या बहुत ज्यादा शोर आसपास ना हो, ताकि वो अपने खाने को एंजॉय कर सके। बेबी को खाना एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे खाना वो अपने हाथों से खाएगा तो वो उसके टेक्सचर को समझेगा, अपनी भूख को समझेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी बच्चे को उसके सिबलिंग से या और बच्चों से कंपेयर ना करें। मैंने प्रैक्टिस में रिपीटेडली देखा है, जहाँ फीडिंग प्रेशर कम होता है वहाँ लॉन्ग टर्म ईटिंग हैबिट्स बेटर होती हैं बच्चों के। सो हमें ध्यान रखना है कि फीडिंग न्यूट्रिशन प्रोसेस के साथ साथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की फाउंडेशन भी है, जो असल में उसकी एडल्ट लाइफ की हेल्थ की भी बहुत बड़ी फाउंडेशन है। सो आखिर में मैं कहना चाहूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ खाना शुरू करना मत समझिए। ये वो दौर है जहां बच्चा टेस्ट के साथ साथ ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहा होता है और भी बहुत नई चीजें सीख रहा होता है। अगर ये फेज पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल किया जाए तो फीडिंग स्ट्रगल नहीं होती बल्कि हेल्थी रूटीन बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बहुत ही खूबसूरत और सिंपल मैसेज डॉक्टर ने आज हमें दिया है, जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को याद रखना चाहिए। सो माय डियर न्यू पेरेंट्स, अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं, सो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही यूजफुल और रीअश्योरिंग रहा होगा। 6 महीने के बाद बच्चे का पहला खाना उसके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक बहुत जरूरी शुरुआत होती है, और आज हमने जाना कि सही समय पर सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना बच्चे के फ्यूचर हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसी के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर रेणु खुराना, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और इतने सिंपल और प्रैक्टिकल गाइडेंस आप तक पहुंचाई। इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीकेंड पोषण की पाठशाला में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भी कूचा।
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: आप बात में यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूचा मत मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, ट्यूबलाइट
2: साले इतना सारे, तू कूच गया।
3: अब पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका तुझे सिखाती है, हंस के देखो ना लतीफा तुझे सुनाती है।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना ना भूले। सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए।

0: दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।
1: आज की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस एक्टर की है जिसने बताया कि हीरो दिखता कैसा है ये जरूरी नहीं, हीरो काम कैसा करता है असली बात वही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और इनकी कहानी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
2: यूपी का एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, वहाँ से एक लड़का निकलता है हाथ में केमिस्ट्री की डिग्री लेकर। कुछ वक्त नौकरी की पर दिल नहीं लगा। पता है दोस्तों, एक्टिंग का चस्का उन्हें ऐसा लगा कि वो दिल्ली पहुंच गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। पर एनएसडी में दाखिला लेना तो सिर्फ पहला कदम था, असली चैलेंज था अपना पेट भरना। नवाज ने वहाँ के एक बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी की। सोचिए, पूरा दिन गार्ड की ड्यूटी और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस। उन्होंने ठान लिया था कि काम चाहे कोई भी हो, मंजिल से ध्यान नहीं हटाना है। 1996 में जब वो मुंबई आए तो उन्हें लगा था कि उनका हुनर उन्हें रास्ता दिखा देगा, पर मुंबई की भीड़ में वो कहीं खो से गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां उनके लुक्स उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए।
1: और बाद में कैसे उनका स्ट्रगल चालू हुआ करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप लोग जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जहां नवाज के पास ना सर पर छत थी और ना ही जेब में पैसा, सिर्फ एक पुराना खत था जो उन्हें हर रोज गिरने से बचाता था। वो खत किसका था, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में और उनकी स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: मुंबई में नवाज का कोई गॉडफादर नहीं था। वो ऑडिशंस देते पर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आप हीरो जैसे नहीं दिखते। साल दर साल बीतते गए, वो 12 साल तक छोटे मोटे रोल्स करते रहे, कभी सरफरोश में एक मिनट का रोल तो कभी मुन्ना भाई MBBS में एक पॉकेट मार। पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहते और उनके लिए खाना बनाते ताकि रहने की जगह मिल सके। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो टूटने लगे थे, तब उनकी माँ ने उन्हें एक खत लिखा। उसमें लिखा था, बेटा कचरे के ढेर की जगह भी 12 साल में बदल जाती है, तू तो फिर भी इंसान है, हिम्मत मत हारना। बस वही एक लाइन उनका सहारा बन गई। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे।
0: और कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने छोटे छोटे रोल्स के बाद करा फैजल खान का रोल, द आइकॉनिक रोल, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हर इंसान की लाइफ में एक सेटबैक आता है। और फिर हर इंसान कमबैक करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में। अभी तो सिर्फ स्ट्रगल था, अब देखिए असली धमाका, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे किरदार की जिसने रातों रात बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स की छुट्टी कर दी थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड गुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और उनकी लाइफ की स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: कहते हैं ना कि टैलेंट को आप ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते। 2012 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि पूरा बॉलीवुड देखता रह गया। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और पर्दा फट गया। नवाजुद्दीन जब फैजल खान बनकर स्क्रीन पर आए तो लोगों को समझ आया कि असली एक्टिंग क्या होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये नवाजुद्दीन का उन सारे रिजेक्शंस को जवाब था जो उन्होंने बरसों तक झेले थे। कहानी फिल्म के गुस्से वाले ऑफिसर से लेकर वासेपुर के गैंगस्टर तक नवाज ने रातों रात सबको अपना फैन बना दिया। जो इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट करती थी आज वही उनके पीछे लाइंस लगाए खड़ी थी। उनका स्ट्रगल अब हिस्ट्री बन चुका था।
0: और कैसे उन्होंने बॉलीवुड से रेड कार्पेट तक का सफर किया, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या

0: सोचिए, एक वक्त जिस शख्स ने दूसरों के बंगलों के बाहर पहरा दिया, आज उसका अपना घर देखकर दुनिया दंग रह जाती है। वॉचमैन की वर्दी से लेकर कांस के एक्सपेंसिव टक्सीडोस तक, ये सफर सिर्फ सक्सेस नहीं, एक स्टेटमेंट थी। लेट्स टॉक अबाउट हिज फाइनल फ्लाइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और कैसे उन्होंने रेड कार्पेट तक का सफर किया। करेंगे इसके बारे में बात, और इसके बारे में नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: आज का सीन देखिए दोस्तों, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी वॉचमैन थे, आज कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में उनका बोलबाला है। मुंबई में उनका अपना एक शानदार बंगलो है जिसे उन्होंने नाम दिया है नवाब। ये उनके पिता के लिए एक सम्मान है और उनकी अपनी मेहनत का इनाम। नवाजुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंस है और आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उड़ने से नहीं रोक सकती। उनकी ये उड़ान आज हर उस यंग ड्रीमर के लिए एक उम्मीद है जो जीरो से शुरू कर रहा है।
0: जहां लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सफर चुना, क्योंकि असली पहचान मंजिल से नहीं संघर्ष से बनती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। मैं फिर मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: You got to.
1: Pushpa, I hate water wasting रे. जा जाके टंकी बंद कर.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान है जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हैं और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजंस हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशंस में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

कॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं, तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौड़ जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है, उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपकी थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता, और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती
1: जी। एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं, जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है, कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है। मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते
1: जी। और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्परेरी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है, और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है, और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको एश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो, यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी लव आजकल और इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। और आज फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ, एक बिजनेस टाइकून की कहानी जहाँ सक्सेस की चमक के पीछे छुपी होती है एक लंबी थका देने वाली कहानी। सोचिए एक बच्चा सिर्फ 4 साल का जिसकी जिंदगी एक डिजीज की वजह से रुक जाती है। डॉक्टर बोल देते हैं नीचे का हिस्सा जिंदगी भर काम नहीं करेगा। बचपन से ही बैसाखियों का सहारा, लोगों की सिंपैथी और सोसाइटी का एक फिक्स लेवल, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है सपने देखने की, हिम्मत करने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो कभी फोटोकॉपी मशीन के सामने बैठकर दिन गिन रहे थे और आज जिनका बिजनेस हजारों करोड़ के आसपास घूम चुका है। आज जब एक रिटेल ब्रांड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तब शायद हमें ये भी पूछना चाहिए इस ब्रांड के पीछे का दर्द क्या था, इस सफलता के पीछे का गिरना कितना गहरा था। पर अभी मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी इनकी कहानी आपको, जिनका नाम जानते ही आप तो कहने वाले हैं ओह ये इनकी कहानी है। तो वक्त है गाने का, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: मीरा महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल।

वेलकम अगेन टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे एक कहानी की बात की थी, एक बच्चा, एक डिसेबिलिटी और एक सपना जिसका एंड किसी को नहीं पता था। अब वक्त आ गया है उस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से आपको मिलाने का। नाम है रामचंद्र अग्रवाल और शायद आप ये नाम पहले ना जानते हो, लेकिन जो ब्रांड इन्होंने बनाया उसे आपने जरूर देखा होगा। मोहल्ले के पास, बस स्टैंड के सामने या हाईवे के कॉर्नर पर विशाल मेगा मार्ट। आज विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड के एक जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग मीम्स बना रहे हैं, क्वालिफिकेशंस पर हंसी उड़ा रहे हैं, पर जब हम सिर्फ मीम देखते हैं हम कहानी भूल जाते हैं। रामचंद्र अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक फाउंडर की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ चलने वाले आदमी की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में ही बता दिया गया था तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, लेकिन उन्होंने नॉर्मल लाइफ का डेफिनेशन खुद लिखा। न सिंपैथी चाहिए, न शॉर्टकट्स, बस एक चीज, अपना काम। और वही सोच आगे जाकर विशाल मेगा मार्ट जैसे मास रिटेल मॉडल की फाउंडेशन बनी। तो अभी हम इनके बचपन में डाइव करने वाले हैं, इनकी फैमिली के बारे में बातें करेंगे और मेंटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे जो इन्होंने स्कूल के दिनों में डेवलप की थी। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ. कभी कभी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा सक्सेस वाला नहीं होता, वो होता है बचपन. रामचंद्र अग्रवाल जो कि विशाल मेगामार्ट के फाउंडर थे. रामचंद्र अग्रवाल का बचपन नॉर्मल नहीं था. 4 साल की उम्र में पोलियो ने इनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी थी. डॉक्टर ने साफ कहा नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा और इस एक सेंटेंस का मतलब था ना दौड़ ना खेल ना नॉर्मल स्कूल लाइफ. बैसाखियों के साथ चलना, लोगों की नजरों का बोझ उठाना और हर रोज खुद को समझाना मैं कम नहीं हूँ. फैमिली सिंपल थी, मिडिल क्लास, ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन एक चीज थी, इज्जत. इनके पेरेंट्स ने कभी इन्हें ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है. एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी, पढ़ना है, समझना है और अपनी जगह खुद बनानी है. स्कूल के दिन इनके लिए मेंटल ट्रेनिंग जैसे थे. हर छोटी चीज मेहनत मांगती थी. बेंच तक पहुंचना, स्टेयर्स चढ़ना, असेंबली अटेंड करना और इसी स्ट्रगल ने इनके अंदर एक चीज डेवलप की, पेशेंस. एडुकेशन पूरी की, डिग्री ली, फिर जॉब. पर ऑफिस के हर दिन के साथ इनके अंदर एक सवाल ग्रो होता गया, क्या मैं जिंदगी भर किसी और के अंडर काम कर पाऊंगा. और इस प्रॉब्लम के साथ जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और जॉब छोड़ देना लोगों को बेवकूफी लगता था. पर रामचंद्र अग्रवाल को अंदर से पता था मुझे अपना काम करना है. और फिर आया उनका पहला कदम, छोटा सा, रिस्की सा और एक फोटोकॉपी मशीन के साथ शुरू हुआ ये सफर. और ये सफर क्या था ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद. गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड। में बात कर रही हूँ विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की, जिन्होंने एक छोटे से फोटोकॉपी शॉप उधार के पैसे से ली, कोई गारंटी नहीं। रोज सुबह दुकान खोलना, मशीन का शोर और शाम को गिनती, कितना कमाया कितना बचाया। एक साल तक ये सिलसिला चला, पैसे आ रहे थे लेकिन दिल नहीं लग रहा था। रामचंद्र अग्रवाल को समझ आ गया था सिर्फ काम चलाना मेरा गोल नहीं है। फिर इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस ट्राई किया, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई मार्जिन सब समझना, लेकिन नतीजा लॉस। यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं, कह देते हैं बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज सीख ली थी, फेलियर फीडबैक होता है। उसके बाद फैब्रिक बिजनेस, कपड़ों का काम, रिटेल की रियल अंडरस्टैंडिंग यहीं से आई। कस्टमर का बिहेवियर, प्राइस सेंसिटिविटी और स्टॉक मैनेजमेंट। 15 साल कलकत्ता में ग्राइंड, दिन रात का काम, और फिर भी अंदर एक आवाज थी, अगर इतना कर लिया है तो कुछ बड़ा क्यों ना करें। और फिर लिया गया एक सबसे डेयरिंग डिसीजन, सब छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना, एक नया शहर, जीरो सपोर्ट। और अभी उसी सपोर्ट के बारे में बात करूंगी, लेकिन गाना सुन लेते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी में बस यही काम डाउन रहना बहुत जरूरी है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगामार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की। दिल्ली में इन्होंने देखा मिडिल क्लास को ऑप्शंस चाहिए पर अफोर्डेबल, मॉल कल्चर एलीट के लिए था। इन्होंने सोचा व्हाई नॉट मास रिटेल। यहीं से विशाल मेगामार्ट का आइडिया निकला, स्टोर खुला, रिस्पांस मिला और फिर एक के बाद एक स्टोर। टीम बनाना इजी नहीं था, लोग डाउट करते थे पर रामचंद्र अग्रवाल का विजन क्लियर था। सिटीज जुड़ती गई, स्टोर्स बनते गए, 414 सिटीज, 2007 आईपीओ, 2000 करोड़ वैल्यूएशन, मीडिया कवरेज, सक्सेस का नशा और यहीं से कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। फास्ट एक्सपेंशन, गलत फाइनेंशियल डिसीजन और फिर 2008 का मार्केट क्रैश, लोन का प्रेशर 750 करोड़, सिस्टम हिल गया, कंपनी गिरने लगी। 2011 में वो मोमेंट आया जब इन्होंने अपनी ही बनाई हुई कंपनी को 70 करोड़ में बेच दिया। सोचिए, ये बिजनेस लॉस नहीं था, ये आइडेंटिटी का लॉस था। यहीं पर ज्यादा कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन रामचंद्र अग्रवाल की नहीं। और कैसे इन्होंने कमबैक किया ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, या तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर खुद को दोबारा डिफाइन किया जाए। रामचंद्र अग्रवाल के लिए विशाल मेगामार्ट को बचाना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, वो एक इमोशनल सर्जरी थी। सोचिए, जिस ब्रांड को आपने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी पहचान से बनाया हो, उसे खुद अपने हाथों से छोड़ देना, 70 करोड़ में कंपनी बेचना। नंबर्स के हिसाब से लॉस था, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस था वो था आइडेंटिटी का। लोग जो कल तक आपको रिटेल किंग कह रहे थे, आज चुप थे। फोन कम बजने लगे, मीटिंग्स खत्म होने लगी। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को खत्म मान लेते हैं। लेकिन रामचंद्र अग्रवाल ने खुद से एक सवाल पूछा, मेरे पास क्या नहीं बचा? जवाब आया, पैसे नहीं बचे, ब्रांड नहीं बचा, पर एक्सपीरियंस जिंदा है, और एक्सपीरियंस सबसे महंगा एसेट होता है। इन्होंने रियलाइज किया कि विशाल का डाउनफॉल का रीजन आइडिया नहीं था, एग्जीक्यूशन का ओवर कॉन्फिडेंस था। इस बार अप्रोच बदली, इस बार ग्रोथ स्लो रखी, इस बार नंबर से पहले डिसिप्लिन आया, और वहीं से शुरू हुआ V2 रिटेल। नया नाम, नया स्ट्रक्चर, पर वही कोर अंडरस्टैंडिंग, इंडियन मिडिल क्लास। नो फ्लैशी ड्रीम्स, सिर्फ सस्टेनेबल बिजनेस, स्टोर बाय स्टोर, सिटी बाय सिटी, कंट्रोल ग्रोथ। आज V2 रिटेल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 6,500 करोड़ से ज्यादा। पर इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट ये नंबर नहीं है, पावरफुल पार्ट ये है कि एक आदमी जो बचपन से चला, जो जिंदगी भर लोगों के डाउट्स उठाता रहा, जो एक बार सब कुछ खो चुका था, उसने फिर से खुद को खड़ा किया। और यहीं से नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन निकलता है, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो वो आपको डिफाइन करता है। अगर आप अपना स्टार्टअप ब्रांड करने के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप लोन, प्रेशर, सेल्फ डाउट से घिरे हो, तो रामचंद्र अग्रवाल की कहानी आपको एक बात याद दिलाती है, एंड तब होता है जब आप खुद मान लेते हो। डिसेबिलिटी एक्सक्यूज नहीं होती, बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होती, और एज कभी बैरियर नहीं होती। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं होता, बिजनेस पेशेंस, सेल्फ बिलीव और लॉन्ग विजन का टेस्ट होता है। आज विशाल मेगामार्ट का नाम शायद नए लोग चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सोच अभी भी जिंदा है। और V2 रिटेल सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट है, मैं गिरा था पर खत्म नहीं हुआ था। और इसी थॉट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड, और जहाँ कहानियाँ सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, दोबारा खड़े होने की होती है। याद रखिए, अगर आप जिंदा हैं तो आपका बिजनेस ड्रीम भी जिंदा है। और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

नौकरानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने, नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार।
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

कभी सोचा है एक छोटा सा दिया पूरे महल को रोशन कैसे कर सकता है? ना एलईडी लाइट्स, ना शैंडलियर, ना इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिर भी एक वक्त था जब राजा महाराजाओं के महल रात में सितारों की तरह चमक उठते थे, और उस जादू का नाम था शीश महल। वो कहा है कि रोशनी जब शीशों से टकराती है तो अंधेरा भी खूबसूरत लगने लगता है। इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर मैं हूँ आरजी इंचली आपके साथ, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम चल रहे हैं शीश महल की तरफ, जहाँ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं, रोशनी

महल में एक दिया जलता था, उसकी रोशनी हर मिरर से टकराकर पूरे महल को स्टार्स की तरह चमका देती थी, मानो जैसे एक रोशनी और हजार रिफ्लेक्शंस। शायद इसी को रॉयल मैजिक कहते हैं। और शीश महल में सिर्फ रॉयल मैजिक ही नहीं, आर्किटेक्चर का भी मैजिक नजर आया, जिसके बारे में करेंगे बातें वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज कल्चर कारवा की कहानी लेकर आई है आपको शीश महल। जब बात हो ही रही है इस महल की तो आइए जानते हैं आर्किटेक्चर का मैजिक। अब सोचिए जरा, उस जमाने में ना मॉडर्न मशीन्स थी ना लेजर कटिंग, फिर भी आर्टिसंस ने इतना डिटेल मिरर वर्क कैसे किया होगा। टाइनी बेल्जियंस ग्लास मिरर्स, इंट्रिकेट फ्लोरल पैटर्न्स और हैंडक्राफ्टेड क्रेविंग्स, हर इंच पर पेशेंस था, हर डिजाइन में आर्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिरर्स को इस तरह लगाया गया था कि एक स्मॉल फ्लेम भी पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर दे। वो कहा है कि जो लोग पत्थरों में जान भर देते हैं वही असल में वक्त को हरा देते हैं। और इतना ही नहीं, ये महल अपने अंदर बहुत सी कहानियां छुपाए बैठा है, जिन कहानियों के बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं शीश महल के बारे में। तो आइए जानते हैं रानियों की सर्दियों का महल क्यों कहा जाता है शीश महल। कहते हैं शीश महल सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बना था। राजस्थान की ठंडी रातों में रानियां यहाँ बैठती थी और एक दिया जलाती थी। मिरर्स की रिफ्लेक्शन से पूरा महल गर्म और ग्लोइंग हो जाता था, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वो कहा है कि कभी कभी आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता, फीलिंग्स को डिजाइन करने का आर्ट होता है। बात तो सही है, क्योंकि एक दिया और हजार सितारे तो जैसा ही चमकता है शीश महल। सबसे फेमस बात जो लोग आज भी याद रखते हैं, शीश महल में एक दिया जलता था और पूरा महल सितारों की तरह चमक उठता था। इमेजिन कीजिए वो सीन, अंधेरी रात, रॉयल साइलेंस और एक टाइनी फ्लेम, और फिर दीवारों पर चमकते रिफ्लेक्शंस, जैसे आसमान ने अपने सारे सितारे महल के अंदर भेज दिए हों। वो कहा है कि हर रोशनी को सूरज बनना जरूरी नहीं होता, कभी एक दिया भी पूरी दुनिया बदल देता है। और शायद इसीलिए सिनेमा और शीश महल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में जानेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह, पर सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी

0: मैं हूँ एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि, जहां आज कल्चर कारवा की कहानी आपको ले आई है शीश महल। तो आइए चलिए जानते हैं सिनेमा और शीश महल का कनेक्शन। शीश महल का चार्म इतना सिनेमैटिक है कि बॉलीवुड भी इसे इग्नोर नहीं कर पाया। पुरानी रॉयल फिल्म्स में मिरर पैलेसेस का इंस्पिरेशन इसी आर्किटेक्चर से आता रहा है, और ऑनेस्टली कैमरा हो या आंखें, शीश महल हर फ्रेम में मैजिकल ही लगता है। अगर बात की जाए कि क्या इस शीश महल को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है, तो वो है क्राफ्ट्समैनशिप, जो आज रेयर देखने को मिलती है। आज के टाइम में ऐसे हैंडमेड मिरर्स वर्क बहुत रेयर हो गए हैं, क्योंकि पहले आर्टिसन सिर्फ काम नहीं करते थे, अपनी रूह उसमें डालते थे। एक पैटर्न कंप्लीट करने में महीनों लग जाते थे, पर जब बनता था तो सदियों तक लोग देखते रह जाते थे। और ये महल सिर्फ कहानियां नहीं दिखाता, ये महल हमें बहुत कुछ सिखाता है। शीश महल हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाता है कि रोशनी तब और खूबसूरत लगती है जब वो बांटी जाए। एक दिया अकेला छोटा लग सकता है, पर रिफ्लेक्शंस उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, बिल्कुल इंसान की अच्छाई की तरह। शीश महल सिर्फ शीशों का पैलेस नहीं है, ये इमेजिनेशन का पैलेस है। एक ऐसी जगह जहां आर्किटेक्चर और पोएट्री एक साथ जिंदा हो जाती है। वो कहा है कि शीशे टूट भी जाएं तो उनकी चमक याद रहती है। कुछ जगहें बिल्कुल वैसे ही होती हैं जो वक्त के बाद भी दिल को रोशन कर देती हैं। अगर आप भी कभी जयपुर जाएं तो शीश महल में एक बार खामोशी से खड़े रहना, हो सकता है आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक और नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो FM द्वारा जनहित में जारी।

के 6 बज चुके हैं और बाहर गर्मी अभी भी कम नहीं हुई और ट्रैफिक अपनी स्पीड में है। और इसी बिजी सी इवनिंग में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है एक अच्छा मूड। और मूड को इंस्टेंटली एनर्जेटिक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैंने ले ली है। मैं हूं आज पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर, जहां हर वीकेंड मैं बात करती हूं बॉलीवुड के उन गानों और फिल्म्स की जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि अपने पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी छोड़ जाते हैं। और आज का एपिसोड है फुल ऑन एंटरटेनिंग, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उस सुपरस्टार को जिसके फिल्म में एक्शन भी होता है, कॉमेडी भी, स्टाइल भी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट भी। जी हाँ, आज का एपिसोड डेडिकेटेड है अक्षय कुमार स्पेशल।

0: तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम सुनते ही एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाता है, और वो मूवी है बॉस।
1: आयुष्मान, याद रखियो, बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़

और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म जितनी स्टाइलिश थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उसकी मेकिंग भी थी। सबसे पहले तो काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये फिल्म मलयालम मूवी पोकिरी राजा का ऑफिशियल रीमेक थी और फिल्म के गाने भी उस टाइम काफी पॉपुलर हुए थे, स्पेशली पारे ऑन लाइट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लिरिक्स के एक वर्ड पर ऑब्जेक्शन हुआ और बाद में उसे म्यूट करना पड़ा था। और अगर आपको लगता है कि फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर ही लार्जर देन लाइफ थी तो बता देती हूँ कि बॉस ने जीनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि फिल्म का जायंट पोस्टर दुनिया के सबसे बड़े पोस्टर्स में इंक्लूड हुआ था। और वैसे क्लाइमेक्स शूट करना भी इजी नहीं था इस मूवी में, क्योंकि थाईलैंड की एक्सट्रीम हीट में एक्शन सीन्स को शूट किया गया था, मतलब कैमरा के पीछे वे फुल स्ट्रगल चल रहा था। और डायरेक्टर एंथनी डिसूजा ने खुद रिवील किया था कि उनकी प्रीवियस फिल्म फेल होने के बाद अक्षय कुमार ने उन्हें सपोर्ट किया और बॉस बनाने में हेल्प की। तो दोस्तों, बॉस मूवी की इतनी बातें हो ही गई हैं कि अब टाइम है थोड़ा दिल को भी एंटरटेन करने का, क्योंकि फिल्मों की बातें बिना गानों के बिल्कुल अधूरी लगती हैं। तो चलिए सुनते हैं बॉस मूवी का वो रोमांटिक ट्रैक, हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में। और अगर इस गाने के बाद आपको भी प्यार वाली फीलिंग आने लगे तो प्लीज मुझे मत ब्लेम करिएगा। और हाँ, इस मूवी के बाद बात होगी ऐसी फिल्म की जहाँ एक्शन के साथ कॉमेडी का तड़का भी था और एक नंबर ने फिल्म को हेडलाइंस में ला दिया था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इस लू भरी गर्मी से लगता है।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
3: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। और ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने आप सभी को हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी जिसमें कॉमेडी का तड़का भी था और एक नंबर ने फिल्म को हेडलाइंस मिला दिया था, और उस मूवी का नाम है खिलाड़ी 786।
1: नाम बहत्तर, जिला मलकानपुर, गांव तासी, सर पे हाथ रब्दा, हाथ में 786।
0: जी हाँ, अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म फैंस के लिए स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि काफी सालों बाद अक्षय कुमार एक बार फिर खिलाड़ी टाइटल के साथ वापस आए थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अक्षय ने ये फिल्म मेनली इसलिए साइन की क्योंकि उनके बेटे को उन्हें एक्शन रोल्स में देखना बहुत पसंद था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो 72 सिंह, 77 सिंह और 71 सिंह के नेम्स भी एक फनी नंबर पैटर्न क्रिएट करते हैं। फिल्म के एक्शन सीन्स को और रियलिस्टिक बनाने के लिए अक्षय ने स्पेशली कॉम्बैट कराटे भी सीखा था। और क्लाइमेक्स की शूटिंग हुई थी मुकेश मिल्स में, जो काफी टाइम से मिस्टीरियस जगह के नाम से फेमस रहा है। अब इस फिल्म की इतनी बातें हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं इस मूवी से हुक्का बार गाना, और गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी फिल्म के बारे में जहां रोमांस के साथ पावर और मैनिपुलेशन का एंगल भी देखने को मिला। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।
3: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो, अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा, ध्यान रखियो मुन्ना।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी को हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगी जहाँ रोमांस के साथ पावर और मैनिपुलेशन का एंगल भी देखने को मिला, और वो मूवी है एतराज।

एतराज उस वक्त बॉलीवुड के लिए काफी डिफरेंट कंसेप्ट लेकर आई थी और ऑडियंस ने भी फिल्म को काफी सीरियसली लिया था। वैसे काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फिल्म हॉलीवुड मूवी डिस्क्लोजर से इंस्पायर्ड मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर को लेकर। और ऑनेस्टली उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिव रोल प्ले किया उसने सबको सरप्राइज कर दिया था। इस रोल के लिए प्रियंका को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और वो ऐसा अवार्ड जीतने वाली सिर्फ दूसरी फीमेल एक्ट्रेस बनी। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को बताऊंगी कि प्रियंका चोपड़ा अपने कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि रियल लाइफ में भी वैसे ही रिएक्ट करने लगी थी और बाद में उनकी मदर ने ये चीज उन्हें रियलाइज करवाई। फिल्म का टाइटल भी काफी यूनिक था। मेकर्स के अकॉर्डिंग एतराज वर्ड ही स्टोरी का मेन इमोशन परफेक्टली एक्सप्लेन करता था। अब इस फिल्म की हमने इतनी बात कर ही ली है तो चलिए सुनते हैं इस मूवी का वो वाला गाना जिस पे काफी सारी मीम्स वायरल हुई थी। जी हाँ, गेला गेला। और इस गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी मूवी के बारे में जो सिर्फ एक्शन एंटरटेनर नहीं थी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कैरी करती थी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: हम आप तक पहुँचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो सिर्फ एक्शन एंटरटेनर नहीं थी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कैरी करती थी। और इस मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।

और इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये फिल्म करप्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनकर सामने आई थी। और अक्षय कुमार ने खुद कहा था कि फिल्म के कई इंसिडेंट्स रियल लाइफ करप्शन केसेस से इंस्पायर्ड थे। करेक्टर के लुक के लिए अक्षय ने वेट गेन भी किया और बियर्ड ग्रो की। हालांकि उनकी छोटी डॉटर को वो बियर्ड बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बियर्ड चुभती थी। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म में, जो पुलिस ऑफिसर्स नजर आए इस मूवी में, उनमें से कई एक्टर्स एक्चुअली क्राइम पेट्रोल का पार्ट रह चुके थे। और फैंस ने एक और कनेक्शन इंस्टेंटली नोटिस किया था, वो ये था कि फिल्म में कई जगह लेजेंडरी शोले के गब्बर को ट्रिब्यूट दिया गया, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके डायलॉग्स तक। मतलब ये फिल्म एक तरह से ओल्ड स्कूल बॉलीवुड विलन को मॉडर्न स्टाइल में सैल्यूट भी करती है। अब इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं तेरी मेरी कहानी गाना। और इसी खूबसूरत गाने के साथ वक्त हो चला है मेरा आपसे इजाजत लेने का। आज की इस म्यूजिकल जर्नी में कहीं एक्शन था, कहीं कॉमेडी, कहीं एंटरटेनिंग स्टोरीज, तो कहीं फिल्मों के पीछे छुपे वो अनसुने किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीकेंड बॉलीवुड के कुछ और हिडन स्टोरीज और अनफॉरगेटेबल गानों के साथ। तब तक अपनी प्लेलिस्ट को लाउड रखिए और म्यूजिक को एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: एक बार जो मैंने सनस्क्रीन लगा ली उसके बाद तो मैं धूप की भी नहीं सुनती।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
4: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
1: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी। धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
2: अरे आगे भी बोलना।
1: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
3: कभी कभी लगता है हम जो बोल नहीं पाते वो सबसे ज्यादा लिखा जाता है, और शायद इसीलिए हर दौर की अपनी एक शायरी होती है। एक दौर था जब प्रेमचंद जैसे लेखक समाज को अपनी कहानियां सुना रहे थे। फिर एक ऐसा दौर आया जहां जॉन एलिया जैसे शायरों ने सच्चाई को बिना किसी पर्दे के लिख दिया, और आज वही शायरी रील्स, ओपन माइक्स और स्टेज पर जिंदा है। तो सवाल सिंपल है, क्या बदला है, सिर्फ तरीका या एहसास भी? हे, आप सुन रहे हैं आज दिल शायराना। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट गीत, और बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि फिर से मेरे साथ यहाँ पर कवि और कवित्रियों की महफिल लग चुकी है जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो वक्त को जाया ना करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी।
4: थैंक यू सो मच।
3: जी जी, ईशा जी आपका स्वागत है, ज्योति जी आपका स्वागत है, अभिनव जी आपका स्वागत है, ज्योति जी आपका स्वागत है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो सभी से है, जो भी पहले जवाब देना चाहे वो आ सकता है माइक के आगे। मेरा सवाल यही है कि आप लिखते क्यों हैं, और अगर शायरी नहीं होती तो आप अपने इमोशंस को कहाँ रखते?
4: बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात ये है
3: जी
4: कि जो भी हमारे अंदर चल रहा है, जो भी हम सोचते हैं, वो हम एक पन्ने पर उकेर देते हैं।
3: जी
4: और ये एहसास बहुत खास होता है। कभी हम रोते हैं वो लिखते हुए, कभी हम हंसते हैं, कभी हम गुदगुदाते हैं।
3: जी,
4: तो इस एहसास को वैसे तो एक्सप्लेन करना, हिंदी में कहेंगे व्याख्या करना, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब आपने पूछा है तो फिर एहसास की बात ऐसी है कि जो भी मन में आया, जो भी दिल ने कहा, वो सब लिख दिया। चाहे वो अपने इष्ट के लिए हो, चाहे वो अपने प्रेमी के लिए हो, चाहे वो समाज को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो।
3: जी,
4: और कहें कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो ये नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं होते।
3: क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने, सीरियसली।
4: तो हम लिखते हैं इसलिए हम कवि हैं, शायरा हैं।
3: जी,
4: और बस इतना ही कहूंगी, लिखना जिंदगी है और लिखते ही रहेंगे और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी।
3: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ज्योति जी आपसे भी ये सवाल है, अगर पोइट्री नहीं होती तो ये इमोशन कहाँ जाते?
5: सबसे पहले मैं अपनी लिखी दो लाइनें,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
5: कोई बात जब जबान से कहीं नहीं जाती, और कोई पीर जो हृदय से सही नहीं जाती, तो अपने लफ्जों से उन्हें कागज पर उकेर लेती हूँ, और सुनने वाले कहते हैं क्या खूब कविता कहते।
3: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो
5: बस यही है कि जब मन में कोई भाव भर आता है और आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होकर भी कहते हैं कि बाहर आप लोगों को कुछ कहने जाएंगे तो आपकी बात का तमाशा बनाया जाएगा, तो उसको जब हम अपनी कविता में ढाल लेते हैं, हमें जो कुछ भी कहना है उसको अपने भाव को कविता के रूप में निकाल देते हैं
3: जी,
5: तो वो एक अलग ही रचना बन जाती है,
3: और वाह वाह भी मिल जाती है।
5: मतलब हमने अपना दुख कह भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो इस तरह से, और अगर कविता ना होती, अगर शायरी ना होती, तो बहुत सारे अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिलता।

0: उपन्यास आते हैं, लेकिन गागर में सागर धंधा वो कविता और शायरी से।
1: जी क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अभिनव जी आपके पास आते हैं, सवाल यही है आपसे।
2: देखिए मैं इसको अपने एक अलग जाविये से देखता हूँ। जैसे फूल है तो फूल की जो खुशबू है वो फूल की खुशबू फूल पे रहती तो है, बट अगर वो बाहर अगर आए ना तो फूल की कितनी सार्थकता, वो फूल भले जाने लोग ना जाने, है ना। तो जो हमारे इमोशंस हैं, चाहे वो प्रेम में हो चाहे वो दुख तकलीफ की बात हो,
1: जी
2: ठीक है, उसको सबसे जो क्लोज, सबसे जो नजदीक पहुंचने तक का जो जरिया है वो पोएट्री है, वो गजल है
1: जी।
2: और इससे करने से, लिखने से हमें ये लगता है कि हम जिंदा हैं
1: जी,
2: जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। बिकॉज ऐसा लगता है कि अगर जो पानी है, पानी भी अगर अपने रवानी पे ना हो तो वो भी सड़ जाता
1: जी।
2: तो इंसान अगर जो भी अपने जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो अगर पन्ने पर उकेरे ना जाएं तो उसकी सार्थकता उतनी नहीं रह जाएगी जहां होनी चाहिए
1: जी।
2: और अगर मैं गजल नहीं कहता, मैं शायरी नहीं करता, तो मैं क्या होता, मैं दो मिसरे पढ़ता हूँ
1: जी।
2: एक मतलब और एक शेर इस पे है कि वहां आ जाएंगे लेकिन वहीं के ना रहेंगे हम, जमी के ना रहे फिर तो कहीं के ना रहेंगे हम।
1: क्या बात है।
2: और ये शेर कोट कर रहा हूं मैं, जिससे आपको एक वजह मिलेगी
1: जी
2: कि मैं क्यों शायरी करता हूँ कि अलम आंसू अजियत इसलिए भी पाल रखे हैं, अलम आंसू अजियत इसलिए भी पाल रखे हैं, अगर इसके नहीं फिर शायरी के ना रहेंगे।
1: क्या बात है, बहुत खूब।

0: है वो मुश्किल होता है, लेकिन शायरी एक ऐसा फील्ड है कि हर कोई अपनी बात लिख भी देता है और वो एक थेरेपी की तरह है मेरे लिए। तो ये थेरेपी ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को दे रही हूँ, अगर शायरी हम समाज के मुद्दों पर लिख रहे हैं या दूसरा किसी से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को वो थेरेपी दी भी जा रही है, क्योंकि उससे कोई ना कोई मोटिवेट हो रहा है, किसी ना किसी का डिप्रेशन कम हो रहा है, किसी को हम अचानक खुश कर रहे हैं, वही है
1: जी। क्या बढ़िया आपने।

0: आपके क्वेश्चन से मुझे एक और बात याद आई है ज्योति जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी। आजकल कविताओं को, शायरी जो है वो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत पे लिख रहे हैं, लेकिन एक जमाना हुआ करता था जहां मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो कवि रहे हैं समाज को आईना दिखाते थे। तो आपको क्या लगता है आज के वक्त में कविताओं में कितनी रियल सोसाइटी दिख रही है, क्या महसूस करते हैं आप इस बात से?
1: सब लोगों के लिखने का ना एक अपना ढंग होता है
0: जी,
1: और सब के शब्दों का जो जाल वो बुनते हैं वो उनके मन के भावों को उजागर करते हैं
0: जी।
1: मेरा ये मानना है कि जब हम एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, स्पेशली एक लेखक जो है
0: जी,
1: वो समाज को उसका आईना दिखाने का काम तो करता है, लेकिन उसको उसकी कॉपी नहीं बनना
0: जी।
1: उसको समाज को एक बेहतर भविष्य की तरफ, एक बेहतर वर्तमान की तरफ लेकर जाना, ये हमारा फर्ज बन जाता है। और प्यार के ऊपर तो बहुत सदियों से लिखा आ रहा है
0: जी,
1: बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ये बात और है कि मैं नहीं लिख पाई ज्यादा उसके ऊपर
0: जी,
1: मैं भावों की कवित्व हूँ
0: तो
1: मैं कुछ ना कुछ भाव के ऊपर लिखती हूँ, जिसमें संभव पता नहीं मेरी जिंदगी के जो नौ रस हैं उनमें मैं श्रृंगार के ऊपर ज्यादा नहीं लिख पाई।
0: ओके,
1: तो इसके लिए मैं कई बार कहती भी हूँ, एक गुरुदत्त जी का गाना है कि हम गमजदा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम
0: जी।
1: तो प्यार पर लिखना मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन ये जरूर है कि हमारा फर्ज है जब हमने कलम हाथ में उठाई, हम कलम के सिपाही बने हैं, तो हमें सही और गलत इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करके और हर उस टॉपिक पर लिखना चाहिए जो समाज को एक सही राह की तरफ लेकर के
0: जी और कुछ बदला जा सके
1: जी। बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अभिनव जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आजकल शायरी बहुत ज्यादा विजिबल हो गई है, रील्स, ओपन माइक्स, तो आपको क्या लगता है, क्या फील करते हैं आप कि आजकल लोग फील कम और परफॉर्म ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा फील होता है आपको?
2: देखिए, अभी आज के जो दौर में एक्चुअली जो शायरी है वो शायरी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शायरी नहीं हो रही है, हो रही है शायरी
0: जी,
2: बट आम तौर पे चूंकि जो दौर जो चल रहा है लोगों में ना वो जो शॉर्टकट मेथड को अपना कि हम मतलब किस तरह से शॉर्टकट वे से कितने जल्दी लोग मतलब फेमस होना, फेम पाना चाहते हैं, तो उस कारण से जो वो उसका जो रंग है वो शायरी पे भी आपको महफिलों में भी दिखेगा और उससे प्रभावित है काफी शायर। मैं नाम नहीं लूंगा बट काफी शायरी प्रभावित है उससे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब आप शायरी करते हैं, जब आप पोएट्री करते हैं, तो आप एक जिम्मेदार, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं
0: जी।
2: तो समाज में जो गलतियां हो रही हैं, समाज में जो सुधार होना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कलम को उस तरफ मोड़े
0: जी,
2: और लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को इंस्पायर करें
0: जी,
2: ये जरूरी है। और लेकिन जो अधिकांश भाग है इसमें भी, उसमें थोड़ा नुमाइश वाली बात है, इससे मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता
0: जी, फील कम किया जा रहा है जी।

0: मिश्रा जी आपके पास आते हैं, जॉनी लिया साहब के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा जानते भी नहीं होंगे, इनफैक्ट उनके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ एक आध दो उनके शेर पढ़ लिए हैं और उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं जॉनी लिया साहब के बारे में बात करूं तो बहुत ऑनेस्ट लिखते थे जॉनी लिया साहब, तो आज के टाइम में क्या उतनी ऑनेस्टी जो है वो पॉसिबल है या फिल्टर आ गए हैं अब पोइट्री में?
1: बात करें तो जहां तक है कि जो शायरी हुई कविताएं हुई, देखो लिखी तो दिल से जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल AI भी आ गया है तो उसका भी बहुत उपयोग हो रहा है। लेकिन जो मैंने अभी तक महसूस किया है, AI वो काम नहीं कर सकता जो दिल करता है,
0: जी जी,
1: है ना, वो भावनाएं नहीं इकट्ठी कर सकता। कई बार मैंने भी कोशिश की कि शायद मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन वो भावनाएं, अब मैं जैसे कि ब्रज भाषा का बहुत उपयोग करती हूँ,
0: जी जी जी,
1: तो वो तो कैच ही नहीं कर सकता। हाँ। उसको पता ही नहीं है कि ब्रज क्या है,
0: जी,
1: राधा रानी क्या है,
0: जी,
1: वो ज्यादा से ज्यादा जो थोड़ा बहुत राधा रानी का कृष्ण से कनेक्ट करके वो बोल देंगे, लेकिन वो चीज नहीं बोल पाएंगे जो मुझे चाहिए,
0: जी,
1: क्योंकि वो सिर्फ मेरी भावनाएं हैं, वो मेरे आंखों में आया हुआ पानी है जिसको मैं स्याही की तरह उपयोग करके एक बहुत खूबसूरत सा भजन लिख सकती हूँ, गीत लिख सकती हूँ,
0: जी,
1: कविता लिख सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनली मेरे अपने विचार है कि जो AI है वो कुछ नया ऐसा कर दे। होती हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अब हम वो पकड़ लेते हैं कि ये बनावटी है। भावनाएं भावना होती है, क्योंकि AI भी तो वही रिपीट करता है जो किसी ने लिखा हुआ है,
0: जी,
1: फिर वो अपना ही क्या जो खुद से ना लिखा गया,
0: जी,
1: तो अपना तो वही है जो खुद से लिखा जाए, जो मन के भाव से आए, जो एकदम तारों को झनकृत कर दे, जो लोगों के दिलों तक सीधी पहुंच जाए, तो वो बात मुझे लगता है कि वो बनावटी चीजों से तो नहीं आ सकती। और जो लोग करते हैं बनावटी चीजें, देखो वो पता लग जाता है, बहुत क्लियर पता लगता है, और जो दिल से है वो दिल तक सीधे पहुँचता है।
0: क्या बात है। ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगी, आप ओपन माइक भी करती हैं, तो ये पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
2: ओपन माइक की तालियां।
0: बट क्यों?
2: एक्चुअली अकेले कमरे में जो हम लिखते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमारा लिखा हुआ एक मतलब जो शायरी है हमारे लिए अपनी औलाद की तरह होती है कि हर को अपना बच्चा अच्छा लगता है, वैसे ही सबको अपना लिखा हुआ अच्छा लगता है, तो वो हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन वहाँ जो सामने ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं, आपको कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें से ही कोई ना कोई उस्ताद बैठा होगा तो आपको वो चीज अभी बताएगा, तो आगे बढ़ने के हिसाब से मुझे वो अच्छा लगता है।
0: जी, तो ऐसी कौन सी आपकी रचना थी जिस पर आपको बहुत ज्यादा तालियां मिली हो, वो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने यहाँ पर रख सकती हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं मतलब रियल लाइफ पर ज्यादा लिखती हूँ और खासकर लड़कियों पर। तो एक ये मैंने रचना लिखी थी किसी लड़के के ऊपर कि लड़कियों की क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो काफी उन्हें कनेक्ट किया और काफी अच्छी वो गई कि हुस्न की तारीफ करके पहले बहलाया गया, फिर मोहब्बत का यकीन भी हमको दिलवाया गया, और जिसकी खातिर छोड़ दी हमने सभी आसाइशें, उस मोहब्बत के लिए फिर रोज तरसाया गया।
0: क्या बात है।
2: आधुनिक कपड़ों की पहले की गई फरमाइशें, फिर हमें पर्दे में रहना खूब सिखलाया गया, रूह तो जख्मी पड़ी है सुन के उसकी गालियां, जेवरों से यार केवल जिस्म चमकाया
0: गया। क्या बात है।
2: मार भी फटकार भी देखो मिली बेइज्जती, चुटकी भर सिंदूर से क्या क्या ही करवाया गया, किस तरह अपनों से कहते जुल्म की ये दास्ता, अर्थी उठने पर ही आना ये ही समझाया गया।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
2: मान कर जिसको खुदा कर ली इबादत उम्र भर, एक उसी दर से फकत ज्योति को ठुकराया गया।
0: क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो अब तो मैं भी मान गई हूँ इस बात को, ओपन माइक की तालियां।

0: पहले लिटरेचर जो था बहुत ही स्लो प्रोसेस था, किताबें इंतजार समझ कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी, आजकल 30 सेकंड की शायरी में सब कुछ सिमट जाता है। तो क्या आपको लगता है ये जो स्पीड है ये लिटरेचर को कितना आगे ले जा रही है या कितना पीछे ले जा रही है?
1: ये एक्चुअली मैं कोट करना चाहूंगा कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। इंसान मतलब यहाँ तक है कि मरने के बाद भी, वहाँ शायर का एक्चुअली वो कहने का मतलब मकसद ये है कि इंसान की जो तलब है वो इतनी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मतलब मरने के बाद भी जो है कफन से वो मुतमईन नहीं होता, कफन से वो संतुष्ट नहीं होता, उसे जमी भी चाहिए
0: जी।
1: तो शायरी जो आज हो रही है, दरअसल हम जो फेम पाने के, या जो हम एक फ्रेज कहते हैं ना कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूटना, बस समझिए वो हो रहा है कि बहुत कुछ ये फेम पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। एक्चुअली हम जब पोएट्री लिटरेचर से जब हम जुड़ते हैं
0: जी।
1: तो जुड़कर केवल तालियां बटोरना और जो भी परोस देना, ये पोएट्री है नहीं। आपको अगर पोएट्री जीना है तो लिटरेचर को के नजदीक जाना होगा और लिटरेचर को अपना महबूब बनाना होगा, तब जो है तब उस पे वो रंग चढ़ेगा। और वो जब रंग चढ़ेगा तो फिर वही है कि फिर वो छूटेगा नहीं, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया।
0: जी, कैफी आजमी साहब के बारे में तो आपने बात कर ली है, उनका शेर आपने सुना दिया है। आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहते हो तो वो जरूर मैं आपसे पूछूंगी।
1: जी, मैं एक गजल अभी काफी लोगों ने सराहा है
0: जी,
1: तो वो गजल उसका कुछ उसका मतलब और चंद अशआर मैं रखता हूँ। देखिए कि मतलब है कि बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, वरना ये जख्म तो भर जाते हैं, भर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: हमको खा जाएगी तन्हाई ये धीरे धीरे, आप मजबूत हैं इस गम से उबर जाएंगे। पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, घर से बेघर हुए ये लोग किधर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: और इसका ये जो शेर बड़ा वायरल हुआ था कि हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, आप क्या सोचते हैं आपसे डर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम लोग सब गांव से एक ख्वाब लेकर आते हैं शहर, उसके बाद दिक्कतें ये होती है कि हम फिर शहर के हो जाते हैं, चाहे वो मजबूरी हो या फिर और।
0: जी,
1: उस पे मैंने शेर कहा था कि शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम अगर नाम कमा लेंगे तो घर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: इस गजल का जो मेरा पसंदीदा शेर है वो ये है कि इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, और जिंदा रहे ये लोग तो मर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत।

ज्योति जी आपके पास हम आते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ बहुत पर्सनल कुछ लिखा हो और जब शेयर करने की बारी आई हो तो रुक गए हो? बेसिकली मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ।

0: कि आप ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या अपने पास रखना है बचाकर और क्या दुनिया तक पहुंचाना है?
1: ये पर्सनल चॉइस के ऊपर साथ साथ, जैसा कि अभी हमने बात की सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे जब मेरे बच्चे टीनेज में थे तो उस वक्त मैंने उनको बहुत कुछ समझाया दुनियादारी के बारे में कि ये सही है ये गलत है।
0: जी जी।
1: उसके बाद जब वो घर से निकले हैं और उनके सामने जमीन पर कूड़े का ढेर पड़ा है
0: जी,
1: तो अब ये उनको डिसाइड करना है कि उसके साइड से निकल कर जाना है या उसमें पैर मारते हुए जाना
0: जी।
1: तो इसी तरह जब लिख रहे होते हैं हम लोग, कई बार भाव भावातिरेक हो जाता है, आप कुछ अपने मन के बहुत दुखी या कुछ इस तरह की चीजें आप लिख जाते हैं या कुछ कड़वा भी लिख जाते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण का आवेग होता है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब वो ऑप्शन भी आ गया कि आप डिलीट कर सकते हैं या आप एडिट कर सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो टचवुड आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा पोस्ट किया
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं शायद मैं अपने दिमाग की ज्यादा सुन लेती हूँ, पोस्ट करती हूँ
0: जी, क्या बात,
1: लिखते हुए दिल की सुनती
0: हूँ। तो जो लिखते हुए दिल की सुनी है आपने, तो आज भी हम आपके दिल की सुनना चाहेंगे कोई आपकी रचना जो आज पहुँचाना चाहे हमारे लिसनर्स तक।
1: बहुत कुछ है, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरी माँ का अचानक चले जाना था
0: जी।
1: तो उन्हीं को समर्पित एक छोटी सी रचना
0: जी।
1: स्वागत है। कि हर बात की शिकायत लेकर दौड़ कर आती थी तुम्हारे पास, हर बात की शिकायत लेकर दौड़ कर आती थी तुम्हारे पास, और मेरी हर उलझन का जवाब हंस कर दे देती थी तुम। तुम्हारे होते जाना ही नहीं क्या है दुनियादारी, तुम्हारे होते जाना ही नहीं क्या है दुनियादारी, कैसे निभाने हैं रिश्ते और किस तरह बांधना है मन को। बस बच्चों की तरह लिपट जाती थी तुमसे लड़कर, तुम्हारी ही शिकायत करती थी तुमसे, और तुम मुस्कुराकर रख देती थी हाथ अपना मेरे सर पे। उस छांव में बच्ची ही बनी रही और एक दिन अचानक तुम कर गई बड़ा मुझको, यूं चल दी मुंह मोड़कर और ये भी ना सोचा कि किसको सुनाऊंगी अब मन अपना, कौन सुलझाएगा मेरे मन की गांठें और किसके आंचल में मिलेगी छांव मुझे। बस चली गई तुम मेरा बचपन लेकर और मैं बड़ी हो गई।
0: क्या बात है,
1: बहुत सुंदर। बेटी से अचानक बस माँ बनकर रह गई, और देखो माँ आज मैं 15 साल के हो गई।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत हार्ट टचिंग है जो आपने अपनी मदर के लिए लिखा है और आज हमारे लिसनर्स तक पहुँचाया है।

0: जी अभिनव जी आपके पास आते हैं। पहले लिटरेचर जो था बहुत ही स्लो प्रोसेस था, किताबें इंतजार समझ कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी। आजकल 30 सेकंड की शायरी में सब कुछ सिमट जाता है, तो क्या आपको लगता है ये जो स्पीड है ये लिटरेचर को कितना आगे ले जा रही है या कितना पीछे ले जा रही है?
1: ये चलिए मैं कोट करना चाहूंगा कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। इंसान मतलब यहाँ तक है कि मरने के बाद भी, वहाँ शहर का एक्चुअली वो कहने का मतलब मकसद ये है कि इंसान की जो तलब है वो इतनी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मतलब मरने के बाद भी जो है कफन से वो मुतमईन नहीं होता, कफन से वो संतुष्ट नहीं होता, उसे जमी भी चाहिए
0: जी।
1: तो शायरी जो आज हो रही है, दरअसल हम जो फेम पाने के या जो हम एक फ्रेज कहते हैं ना कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूटना, बस समझिए वो हो रहा है कि बहुत कुछ ये फेम पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। एक्चुअली हम जब पोएट्री लिटरेचर से जब हम जुड़ते हैं
0: जी।
1: तो जुड़कर केवल तालियां बटोरना और जो भी परोस देना ये पोएट्री है नहीं। आपको अगर पोएट्री जीना है तो लिटरेचर को के नजदीक जाना होगा और लिटरेचर को अपना महबूब बनाना होगा, तब जो है तब उस पे वो रंग चढ़ेगा और वो जब रंग चढ़ेगा तो फिर वही है कि फिर वो छूटेगा नहीं, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया।
0: जी कैफी आजमी साहब के बारे में तो आपने बात कर ली है, उनका शेर आपने सुना दिया है। आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहते हो तो वो जरूर मैं आपसे पूछूंगी।
1: जी मैं एक गजल, अभी काफी लोगों ने सराहा है
0: जी,
1: तो वो गजल उसका कुछ उसका मतलब और चंद अशआर मैं रखता हूँ। देखिए कि मतलब है कि बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, वरना ये जख्म तो भर जाते हैं, भर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: हमको खा जाएगी तन्हाई ये धीरे धीरे, आप मजबूत हैं इस गम से उबर जाएंगे। पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, घर से बेघर हुए ये लोग किधर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: और इसका ये जो शेर बड़ा वायरल हुआ था है कि हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, आप क्या सोचते हैं आपसे डर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम लोग सब गांव से एक ख्वाब लेकर आते हैं शहर, उसके बाद दिक्कतें ये होती है कि हम फिर शहर के हो जाते हैं, चाहे वो मजबूरी हो या फिर और
0: जी।
1: उस पर मैंने शेर कहा था कि शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम अगर नाम कमा लेंगे तो घर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: इस गजल का जो मेरा पसंदीदा शेर है वो ये है कि इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, और जिंदा रहे ये लोग तो मर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत।

0: ईशा जी आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, आजकल शायरी और कंटेंट के बीच की जो लाइन है वो एकदम ब्लर हो गई है। हर जो शायरी होती है वो वायरल हो ही जाती है, बिकॉज जैसे पहले भी बात हुई है कि फेम के चक्कर में भी बहुत लोग लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आजकल बहुत सारा कंटेंट जो है वो सिर्फ एल्गोरिदम के लिए लिखा जा रहा है?
1: देखिए, इसमें सबके अपने अपने विचार होते होंगे, वैसे मोस्टली यही सुनने में आता है। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मेरे साथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एल्गोरिदम को ठीक करो, ये है वो है, बट लेकिन मैं टिकी रही कि नहीं, जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरे जीवन में चल रहा है, मैं अपने हिसाब से करूंगी, मुझे एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है। और टचवुड, मेरे काफी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं, अगर आप चेक करेंगे।
0: क्या बात है।
1: और मुझे नहीं लगता कि एल्गोरिदम से, देखो बहुत ही ज्यादा अगर आप बिल्कुल ऐसे चलें कि तरीके से चलें तो वही वाली बात है कि वो भी फेमस हो रहे हैं और हम भी फेमस हो रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं थोड़ा कम ट्रस्ट करती हूँ इस चीज पे, और मुझे मेरे जैसे रहना बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद मैं काफी रूल्स को पीछे भी छोड़ देती हूँ। और मेरा मैसेज सीधा सीधा लोगों को यही जाता है कि जो आपका मन करे ना आप वो करें। और अगर टेक्निकली आप बात कर रहे हो तो ये चीज भी बहुत सारी जगह पे होती है, और एक कहते हैं ना कि कमाई का एक जरिया भी है उन लोगों के लिए, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ये एल्गोरिदम का जो शोर है ये बस मचाया जा रहा है। फेमस होना भी थोड़ा सा देखो लक की भी बात होती है, और आपके अंदर क्या टैलेंट है उसकी भी बात होती है। और हालांकि देखने में ये भी मिलता है कि कोई कुछ भी कर रहा है और वो फेमस हुए जा रहा है, बट वो भी तो देखिए ना, अचानक से ही हुआ है, उन्होंने कौन सा एल्गोरिदम का फॉलो किया होगा। तो ऐसा तो मैं नहीं सोचती पर्सनली, ये मेरे अपने विचार है।
0: कोई आपकी रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें, और आपने खुद भी बताया कि आप ब्रिज भाषा में लिखती हैं, तो उसमें भी तो हम जरूर सुनेंगे आपसे।
1: बिल्कुल, देखिए मैं बरसाने की बहू के नाम से जानी जाती
0: हूं। अरे वाह,
1: अब नए इस मंच पे आई हूँ तो मैं अपना परिचय इसी तरह से देना चाहूंगी कि

0: तो ये तो मेरा कहते हैं ब्रज वाला, मैंने आपको बताया
1: जी।
0: और इसके अलावा देखिए, अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने आपको बताया मैं एल्गोरिदम का यूज नहीं करती मैं अपनी शर्तों पे चलती हूँ। तो वहीं से मैंने कुछ लिखा है कि धीरे धीरे सही

संभाला था सबके लिए, मैंने खुद को संभाला था सबके लिए, अब संभल के संभाला।

हूँ इश्क खुद से करो कि मैं हूँ ईशा कहूँ इश्क खुद से करो इश्क की।

0: सही अपने मन की हुई।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जो आपने गाया है वो बहुत कमाल है, सीरियसली। आप पे जाते हैं, मुझे लगता है टैगलाइन मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: अरे आपको ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली
1: जी।
0: ये मैं हमेशा से ही बोलती आ रही हूँ। और जब वो मूवी आई थी जब भी
1: मैं
0: और जब उन्होंने ये यूज किया, आप बिलीव नहीं करेंगे उसका यूज मैंने कहाँ किया। उसका यूज मैंने फिलहाल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो थर्ड एपिसोड है अक्षय कुमार के साथ,
1: जी,
0: तो करीना कपूर की मैंने अक्षय कुमार से शिकायत की है।
1: ओके।
0: मेरी जो ये फेवरेट लाइन है वो करीना जी ने चुराया है, तो कृपया करके आप उनसे बोले कि मेरी लाइन का जो आपने उपयोग किया है उसका कुछ मुझे मिल जाए। तो व्हील ऑफ अक्षय कुमार के साथ
1: जी जी।
0: जो मेरा,
1: अरे वाह,
0: मैंने इसका उपयोग,
1: क्या बात है।
0: तो ये बिल्कुल सही है, ये मेरी ही टैगलाइन है।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।

0: अब हम क्लोजिंग पर आ चुके हैं अपने प्रोग्राम की, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जाते जाते एक सवाल फिर सबसे है, ये सवाल, अगर आपको एक लाइन में बताना हो आपके लिए पोएट्री क्या है तो वो क्या होगा, और इसी के साथ साथ आपकी कोई एक और खूबसूरत रचना जो हम फिर से सुनेंगे, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएंगे। ज्योति जी, आपसे हम
1: शायरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो मैं थेरेपी अभी भी यही बोल रही हूं, शायरी मेरे लिए थेरेपी।
0: जी जी जी।
1: यूं कदमों में अपने झुकाना है मुश्किल, इशारों पे मुझको नचाना है मुश्किल, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा, मुझे रास्ते से हटाना है मुश्किल, बनानी पड़ेगी मुझे फिल्म पूरी, गजल में तो सब कुछ बताना है मुश्किल, मोहब्बत से बेशक हरा दो मुझे तुम, अना से तो मुझको हराना है मुश्किल।
0: बहुत बढ़िया।
1: मयस्सर है दौलत से सब कुछ जहां में, मगर यार ज्योति को पाना है मुश्किल। एक शेर और मैं सुनाना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मेरा, मैं सब कहते हैं कि मैं खेलों पर लिखती हूँ लेकिन मैं जिंदगी पर लिखती हूँ, जिंदगी भी खेल से कुछ ज्यादा कम नहीं है। तो ये अच्छा मेरा शेर काफी वायरल हुआ है कि पल में बुलंदी से गिरा डाला मुझे, बर्बादियों ने इस कदर चाहा मुझे, मैं जीतने वाली थी खेले जिंदगी, 99 पे सांप ने काटा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ज्योति जी जब यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले आते मुझसे बोला था कि मैं आज पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कीजिएगा, लेकिन वो छुपा रुस्तम जो शब्द

0: ज्योति जी आपसे भी सवाल है
1: जी,
0: पोइट्री क्या है आपके लिए?
1: पोइट्री के लिए मैंने पहले चार लाइनें जो बोली थी उसी को आगे लेकर चलती हूँ कि कविता से मिलती है मेरे मौन को सुबह और कविता देती है मेरे निस्पंद हृदय को प्राण, और मुझे जीने का एहसास कराती है कविता, मेरे हर पल को खास बनाती है कविता, मेरे शब्द मेरे आंसू मेरी मुस्कान की बहती है जब भाव सरिता, तब अंतस में कहीं जन्म लेती है कविता।
0: क्या बात है।
1: और जहाँ सांसें बोझिल और पांवों में थकन होती है वहाँ शब्द करते हैं नर्तन और एक कविता जन्म लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये तो थी कविता की बात जो आपने कंप्लीट की, लेकिन एक और कोई रचना जो आपके दिल के करीब हो वो आप यहाँ?
1: दिल के करीब बहुत है, लेकिन मेरी एक गजल काफी फेमस हुई थी,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा उसी
0: जी जी जी
1: सिंध

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: जिंदगानी को कभी मेरी सवारा होता।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

0: ईशा जी आपके पास आते हैं, आपके लिए कविता क्या है और कोई एक और खूबसूरत आपकी रचना जो आप हमें यहाँ सुनाना चाहते हो?
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने

0: बोला है कि जो मेरी टैगलाइन है मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, मैं ही कविता हूँ, या तो कोई मुझ पे लिख देगा किसी पे लिख
1: क्या बात है। बहुत खूबसूरत।
0: मैं तो यही मानती हूँ कि जो मैं हूँ वो ही मैं लिख रही हूँ, या फिर अगर कोई और लिखेगा तो अगर मेरे लिए तो वो भी मेरे लिए कविता है, वही गजल है, वही मेरे लिए शायरी है।
1: जी।
0: तो मैं भी पहले एक सोच रही हूँ कि एक छोटा सा शेर बोल के और फिर उसके बाद मैं अपनी रचना बोलूंगी। आपके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया। तो कि गजल लिखना नहीं आया, गीत लिखना नहीं आया, गजल लिखना नहीं आया, गीत लिखना नहीं आया, मगर जो भी लिखा मैंने वहाँ खुद को बहुत पाया।
1: क्या बात है।
0: मगर जो भी लिखा मैंने वहाँ खुद को
1: बहुत बढ़िया।
0: और आप जैसे कह रही हैं कि अपनी रचना, और आपने जैसे ब्रज की बोला था कि आप सुनोगे, तो मैं आपको वही सुना
1: देती हूं। जी।
0: मेरी राधा रानी के चरणों में समर्पित, और रात के 1:30 बजे ये कविता, ये सवेरा लिखा गया था और मैं फपक फपक के रोई थी। तो राधा रानी के चरणों में समर्पित, और ये भाव आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि

0: आई तुम्हारी शरण में,
1: बहुत खूबसूरत
0: भाग चमकत आई तुम्हारी शरण में।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
2: राधा रानी की जय।
0: थैंक यू।
1: ये जो समा बांधा है आपने, बहुत अच्छा लगा, और आप सबसे बातें करके, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत

मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैंने लिखा था, कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इंतजार लिखूं, ऐ कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखा। तो ऐसे ही मैं पन्नू से बात कर लिया करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें लिसनर्स तक पहुँचाए। कहते हैं कि वक्त बदलता है, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो हमेशा कनेक्ट करता है। आप सुन रहे थे आज दिल शायराना, मैं आपकी होस्ट गीत आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और अब आपसे इजाजत चाहूंगी। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को, छटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। देखो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: शो वाली सपना
1: और मैं ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे इतना खूबसूरत गाना था कि आना तो मेरा बनता ही था, लेकिन इस बार जो मैं आई हूँ ना तो बहुत जोश से आई हूँ, क्योंकि ऐसे जोशीले गाने आपके अंदर जो एनर्जी और जो पॉजिटिव वाइब भर देते हैं, बस वही तो चाहिए, उसी की तो कमी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार की जिन्होंने मराठी परिवार में जन्म तो लिया लेकिन पढ़ाई के लिए पहुंच गए पुणे, लेकिन यहाँ आकर रंगमंच का इनके ऊपर कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि इन्हें एक्टिंग का भूत सवार हो गया, और उसके बाद तो इन्होंने ठान ही लिया कि भाई साहब हम तो बड़े मंच पर आकर रहेंगे। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और फाइनली इन्होंने अपने टैलेंट का जलवा बड़े स्क्रीन पर दिखा ही दिया। किसकी बात कर रही हूँ और कैसी हुई इनकी एंट्री बॉलीवुड में, बॉलीवुड तक पहुँचने के लिए कितनी स्ट्रगल इन्हें करनी पड़ी और बॉलीवुड में आने के बाद कितनी स्ट्रगल इन्हें करनी पड़ी, इन सब पर आज बात करेंगे। पर ये जो पॉजिटिव वाइब मेरे आने से पहले बनी हुई थी, इसी पॉजिटिव वाइब को थोड़ा सा और एंजॉय कर लेते हैं।

0: जा रहा हूँ। सवाल है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओ नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अली दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से और मरते हैं शान से। खैर, अब तो ये बहुत ही पुरानी और पिछड़ी हुई बातें लगने लगी हैं, क्योंकि आजकल अगर इस गाने को लिखा जाता तो कुछ ऐसा लिखा जाता, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, सुबह से शाम तक। क्योंकि ये जो प्यार का कॉन्सेप्ट है, आजकल की जनरेशन को थोड़ा सा कम समझ में आता है। बुखार की तरह ये प्यार होता है और एक गोली के अंदर जाते ही, यानी कि एक लड़ाई के होते ही, ये प्यार खत्म भी हो जाता है। फिलहाल चलिए इस प्यार को थोड़ा सा साइड करते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे कलाकार का, जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मराठी थिएटर आर्टिस्ट एंड टीवी एंड बिग स्क्रीन एक्टर मोहन जोशी जी की, जिनका जन्म 12 जुलाई 1953 को बेंगलोर में हुआ।
1: अंडरवर्ल्ड का डॉन मैं हूँ, एक कच्छ लुक का।
0: एंड ही वाज ओनली 4 व्हेन हिज फैमिली शिफ्टेड टू पुणे। यहाँ आकर इन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन भी इन्होंने पुणे से ही कंप्लीट की। पर अपनी स्कूलिंग के दौरान ही इन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर एक एक्टर छुपा है, और इसी एक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने कई ड्रामास में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। एंड बीइंग अ मराठी बॉय, इन्होंने मराठी थिएटर भी ज्वाइन किया। और जब तक इनकी पढ़ाई पूरी होती और ये बंधते शादी के बंधन में, इन्होंने अराउंड 60-62 थिएटर ड्रामास ऑलरेडी कर लिए थे। पर जैसे कि उस वक्त की मिडिल क्लास फैमिली की मेंटेलिटी हुआ करती थी, जैसे ही बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई इमीडिएटली उसको जॉब मिल जाती थी और साथ ही उसकी शादी कर दी जाती थी। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही इन्हें एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली, जो कि ये नहीं चाहते थे करना, पर फैमिली प्रेशर में इन्हें इस जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ा, वैसे ही इनकी शादी भी कर दी गई। पर वो कहते हैं ना कि एक एक्टर अगर अंदर बैठा हो तो वो आपको बैठने दे ही नहीं सकता, वो तो आपको भगाता है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। और जब इन्हें ये रियलाइज हुआ कि इन्हें कंपनी में क्लर्क की नौकरी नहीं करनी, ऐसी बंधी हुई लाइफ इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसी वक्त इन्होंने रिजाइन किया और उस नौकरी से बाहर आ गए। पर नौकरी छोड़ते ही घर में तो जंग छिड़ गई, क्योंकि अब पेरेंट्स को लगने लगा था कि ये बच्चा क्या करेगा। एक तो शादी हो गई है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की आ चुकी है, अब ये अपना ही गुजारा नहीं कर पाएगा तो अपने परिवार को कैसे पालेगा। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए काफी हिम्मत की जरूरत थी। वो कौन सा कदम था ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल एंजॉय कीजिए देवानंद और मुमताज जी पर पिक्चराइज एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।
3: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं रात बाकी बाद बाकी विद सपना।

चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। वैसे तैयार हैं तभी तो इस चांदनी रात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6। सपना हूँ मैं आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम मोहन जोशी जी की बात कर रहे थे, पर इससे पहले कि मैं उनकी और बात करूँ बता दूँ मैं आपको कि ये जो गाना अभी आप एंजॉय कर रहे थे इसे राजकुमार साहब और मीना कुमारी जी पर पिक्चराइज किया गया था। एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म का ये गीत है जिसका नाम है पाकीज़ा। तो इसी पाकीज़ा के साथ वापस चलते हैं हमारे आज के स्टार की ओर जो कि हैं मोहन जोशी जी। और ये जोशी जी जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की और इसी के साथ इन्हें एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही इनकी शादी भी कर दी गई, लेकिन जब इन्हें लगा कि नहीं बाबा मैं तो एक 9 to 5 की जॉब में फंस कर अपने अंदर के आर्टिस्ट को मार रहा हूँ, तो इन्होंने तुरंत रिजाइन किया और वापस चले गए अपने थिएटर की ओर। अब पेरेंट्स थोड़े से नाराज होने लगे थे इनसे क्योंकि उनके लिए तो बेटा सेटल हो चुका था लेकिन वो तो अपनी जॉब छोड़कर घर आ गया। ऑफ कोर्स टेंशन तो किसी को भी होती है, इनके पेरेंट्स को भी हुई, पर इन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये थिएटर से इतना तो कमा ही लेंगे कि अपना परिवार चला लें। पर पेरेंट्स को कौन समझाए बाबा, उन्होंने इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया और इसी प्रेशर का ये नतीजा था कि इन्होंने अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट की। एक ट्रक से इन्होंने स्टार्ट किया और टू बिगिन विद इन्होंने ड्राइवरी भी की। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन्होंने अपनी कंपनी में ट्रक और ड्राइवर्स दोनों बढ़ा दिए। पर 8 साल बाद एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ इनके ट्रक से जिसने इन्हें बुरी तरह से हिला दिया एंड ही वेंट इनटू डीप डिप्रेशन। और इसी डिप्रेशन के चलते इन्होंने अपनी उस कंपनी को भी बंद कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा आपके लिए खोल देता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जोशी जी ने अपनी कंपनी तो बंद कर दी लेकिन तभी इन्हें एक मराठी थिएटर के लिए इन्विटेशन आया। ये बात बहुत ही शॉकिंग थी इनके लिए क्योंकि ये पिछले 8 सालों से जब से अपना बिजनेस कर रहे थे तब से इन्होंने थिएटर की ओर मुड़कर भी नहीं देखा था। पर फिर भी इन्हें एक ड्रामा थैंक यू मिस्टर ग्लार के लिए इनविटेशन आया जिसे ज्वाइन करने के लिए ये तुरंत पहुंच गए मुंबई। पर यहाँ पर तो कुछ बड़ा इनका इंतजार कर रहा था। इसी थिएटर को करते करते इन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जो कि सिर्फ एक चाबी थी बॉलीवुड की। कौन सी थी ये फिल्म, कैसे मिली इन्हें ये फिल्म और किस तरह से इनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में, ये सारी बातें करते रहेंगे। पर इतनी जल्दी नहीं क्योंकि रात हसीन है और इसी हसीन रात को एंजॉय करते हैं कुछ हसीन गानों के साथ।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
3: अगर वो बोल सकते तो शायद कहते, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरे नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

अब जैसा कि कहते हैं कि मुंबई तो सपनों की नगरी है और यहाँ आकर हर किसी के सपने पूरे हो जाते, और ऐसे ही सपनों की एक पोटली लेकर मोहन जोशी जी भी मुंबई आ चुके थे। थिएटर में अपने किरदार को निभाने के साथ साथ इन्होंने कई अलग अलग फिल्मों के लिए ऑडिशंस देना भी स्टार्ट कर दिया था। तभी इनकी एक बार फिर से मुलाकात हुई अपने कॉलेज फ्रेंड रवि से, जिनके फादर साहब मराठी फिल्मों के डायरेक्टर थे, जिन्होंने इन्हें ऑफर किया अपनी अपकमिंग फिल्म एक दाव भुताचा में विलन का किरदार। पर जैसे ही ये वहाँ शूटिंग सेट पर पहुंचे, इनका मेकअप हुआ, सब कुछ डन हो गया, तो इनके शौक के लिए इन्हें एक न्यूज मिली कि इनका किरदार ऑन द स्पॉट छोटा कर दिया गया है और अब ये विलन का किरदार नहीं निभा रहे थे बल्कि एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत ही बुझे मन से उस रोल को भी निभाया, अच्छे से निभाया, और इसी के साथ साथ ऑडिशंस भी इनके चल रहे थे। और इसी साल 1983 में डीडी नेशनल पर श्वेतांबरा नाम का एक टीवी सीरियल भी इन्हें मिल चुका था, और साथ ही इन्हें कुछ और टीवी सीरियल्स में भी काम करने का मौका मिला, जिसमें हद, संघर्ष और डिटेक्टिव धनंजय का नाम शामिल है। ये हिंदी सीरियल्स थे जिनकी शूटिंग के दौरान इन पर नजर पड़ी एक बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर की, जिन्हें इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, और तुरंत ही उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म भूकंप में एक छोटा सा रोल इन्हें ऑफर किया। पर जैसे ही ये पहुंचे शूटिंग सेट पर, इनके साथ कुछ पहले एक्सपीरियंस से बिल्कुल उल्टा हुआ, जहां एक दाव भुताचा में इनके बड़े किरदार को काट कर बिल्कुल छोटा सा कर दिया गया, वहीं बिल्कुल ऑपोजिट भूकंप फिल्म में इनके छोटे से किरदार को बढ़ाकर मेन विलन का किरदार कर दिया गया, और इन्होंने खुश होकर उस किरदार को इतनी बखूबी निभाया कि उसके बाद तो इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक ये फिल्म रिलीज होती, इनके पास 5-6 बड़ी फिल्में भी आ चुकी थी, और अब ये टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी पहुंच चुके थे। और ये ऐसे पहले एक्टर नहीं थे, SRK, सुशांत, विद्या बालन, इरफान खान और ना जाने कितने ऐसे स्टार्स का नाम शामिल है जिन्होंने छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत की, और उसके बाद जब वो बड़े पर्दे पर आए तो वहां पर भी लोगों ने उन्हें भर भर के प्यार दिया।

0: बॉयफ्रेंड हूं इसलिए गुलाम हूं।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।

0: हूँ आप सभी की
1: रेट्रो वाली सपना
0: और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं मोहन जोशी साहब की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो कदम रख लिया और एक के बाद एक इन्हें फिल्में भी मिलने लगी। पर उस वक्त के जो विलन्स थे वो फिल्म इंडस्ट्री में इतनी मजबूत पकड़ बनाए बैठे थे कि उनके सामने मोहन जी का टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अब अगर मैं उस टाइम के विलन्स की बात करूं तो इतनी लंबी लिस्ट हम सबके सामने थी, जिसमें गुलशन ग्रोवर, सदाशिव, अमरीश पुरी, ओम पुरी, परेश रावल, शक्ति कपूर, डैनी एंड सो ऑन। और इन सभी धुरंधरों के बीच में अपनी जगह बनाना मोहन जोशी के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो था, पर इनकी बेसी वॉइस और इनकी अपीयरेंस ने बड़े पर्दे पर हर किसी को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। 1994 में आई फिल्म ऐलान में इन्होंने बाबा का कैरेक्टर प्ले किया था।
2: गांधी जी चले गए, इन चेलों को छोड़ गए।

रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इनका तिरुपत सिंह का कैरेक्टर सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तभी तो इन्हें बेस्ट विलन अवार्ड से भी नवाजा गया था। पर वो कहते हैं कि आप जितना भी अच्छा काम करें, अपने आप से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती जाती हैं। ऐसा ही कुछ मोहन जोशी जी के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे ये अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर रहे थे, वैसे ही अपने आप से इनकी उम्मीदें और बढ़ती जा रही थी। और क्योंकि ये ऑन स्क्रीन एक विलन थे, पर दिल से तो बहुत ही देसी बॉय, बहुत ही डिवोशनल और बहुत ही ग्राउंडेड इंसान थे, और मैनिफेस्टेशन में ये बहुत ही ज्यादा बिलीव किया करते थे। इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने अच्छे स्टार्स के साथ काम करने के बावजूद भी इनके दिल में कुछ इच्छाएं थी, और इन्होंने कुछ ऐसे स्टार्स जिनको ये हमेशा से आइडियलाइज करते थे, उनके साथ काम करने के लिए मैनिफेस्ट किया। अब इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई या नहीं, ये मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि कुछ खूबसूरत से गीत आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। एंजॉय दीज ट्रैक्स एंड आई विल बी राइट बैक।

0: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे एक्सीडेंट पर कैसे हुआ?
0: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
2: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।

0: स्कूल पे जाके।
1: और इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सपना हूं मैं आपके साथ और आज रात बाकी बात बाकी में मोहन जोशी जी की बातें चल रही हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक विलन कैरेक्टर को अपनाया और यहां पर उन्हें एज अ विलन बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। इसी का एक सबूत है कि 1997 में रिलीज हुई फिल्म मृत्युदंड में इनका एक अलग ही कैरेक्टर था और ये इतने ज्यादा खूंखार लग रहे थे उस रोल में कि माधुरी दीक्षित जब भी इन्हें देखती थी वो डर जाती थी। पर जब इस फिल्म का आया क्लाइमैक्स तब माधुरी जी ने कुछ ऐसा किया कि हमारे विलन साहब ही डर गए। दरअसल पूरी फिल्म में तो वो इनसे डरती रही पर फाइनली जब उन्हें मौका मिला इस विलन को क्लाइमैक्स सीन में डराने का तो वो खुद इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इस रोल को इतना ज्यादा अंदर उतार चुकी थी कि क्लाइमैक्स में जब वो मोहन जोशी को मारने आई तो मोहन जी खुद ही डर गए और इतना ज्यादा डर गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि ये बताता है कि किरदार चाहे कोई भी हो वो अपना रोल प्ले करते टाइम उसे सिर्फ निभाता नहीं बल्कि उस किरदार को जीता है। ऐसा ही एक किरदार इन्होंने निभाया था 2003 में आई फिल्म गंगा जल में और ये फिल्म दरअसल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। जब इस फिल्म के डायरेक्टर विलन की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कि विलन तो हो पर लाउड ना हो या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सैल और डेंजरस दिखाई ना दे, बहुत ही हम्बल सा हो, बिल्कुल लो टोन में बात करे, बेसी वॉइस हो और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। तो उनकी तलाश जाकर खत्म हुई हमारे जोशी साहब पर और उन्हें ये इतने पसंद आ गए कि उन्होंने तुरंत ही इन्हें एज अ विलन फॉर दिस मूवी साइन कर लिया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पब्लिक के लिए इट वाज अ सरप्राइज एलिमेंट एंड दे एक्चुअली वेंट क्रेजी। एक अलग ही ट्रेंड मार्केट में बन गया था और इस फिल्म के चार मेन कैरेक्टर्स जिसमें मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, अजय देवगन और जोशी साहब का नाम शामिल है, ये सभी कैरेक्टर्स इतने आउटशाइन हुए इस पर्टिकुलर फिल्म से कि फिल्म के हिट होने के बाद इनके घरों के बाहर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई और अच्छी खासी बजट की फिल्मों के रोल्स ऑफर हो रहे थे। जहां सब बहुत खुश थे, अजय देवगन फ्लरिश करने लगे थे अपने करियर में, लेकिन वहीं पर जोशी साहब ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल ही हिला दिया। इट वाज 2004 जब इन्होंने बॉलीवुड में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और एक साल पहले इतनी हिट फिल्म के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जोशी साहब इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे। पर उनके इस डिसीजन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था बताऊंगी आपको, फिलहाल वक्त है म्यूजिक का।

जैसे पन्ना को तमन्ना थी कि हीरा उसे मिल जाए, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को भी ये तमन्ना थी कि उन्हें एक ऐसा विलन मिले जिसकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो, लेकिन जिसकी आवाज में गहराई हो, ना कि वो आवाज डराने वाली हो। तो उन्हें मोहन जोशी के रूप में ऐसा ही एक विलन मिल चुका था और उन्होंने 2003 में आई फिल्म गंगा जल से इस बात को प्रूव भी किया। तभी तो इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स थे उन सभी के पास फिल्म के हिट होने के बाद एक के बाद एक इतनी ज्यादा फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। सब बहुत खुश थे एक्सेप्ट वन, एंड ही वाज नन अदर देन आर जोशी साहब, जो कि थोड़े से उदास हो गए थे क्योंकि जिस तरीके के कैरेक्टर्स ये इतने सालों से करते आ रहे थे और आगे इन्हें जिस तरीके के रोल्स ऑफर हो रहे थे वो सारे नेगेटिव थे। अब इनका मन भर चुका था इन नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, इसीलिए इन्होंने 2004 में पूरे बॉलीवुड को शॉक करते हुए अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। This was a big shock for the whole industry and for the audience as well. तो अब इन्हें ऐसा लगा कि बस मैं इससे ज्यादा नेगेटिव किरदार नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपना रुख किया और वहां पर भी इनका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया गया क्योंकि जिस तरीके के रोल्स ये चाहते थे वैसे ही रोल्स निभाने का मौका इन्हें मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने दिया। वही की एक फिल्म जो कि 2015 में रिलीज हुई थी उसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। फिल्म का नाम था देओल बंद और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रवीण तरडे जी ने। जब वो इस फिल्म में एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, वो कैरेक्टर था स्वामी समर्थ जी का, तो उन्हें एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी जिनकी आंखों में तेज चमक हो लेकिन साथ ही उनकी आवाज में अथॉरिटी हो, डेप्थ हो काफी ज्यादा। तो उन्हें किसी और की नहीं सिर्फ मोहन जी की याद आई और डायरेक्टर साहब ने जोशी साहब को इनवाइट किया कि आप आइए और इस कैरेक्टर को प्ले कीजिए। ये अलग बात है कि इस रोल के लिए भी उन्हें ऑडिशन देना पड़ा था, पर स्टार्टिंग में जोशी जी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। एक इतना अच्छा करियर होते हुए भी ये जो नर्वसनेस थी ये सक्सेस की निशानी थी। दरअसल ये एक स्वामी जी का कैरेक्टर था जो कि अपने एक भक्त के पास आते हैं और उसे जिंदगी का असली मतलब समझाते हैं। और जब जोशी जी इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने आए तो उन्होंने जो गेटअप लिया उस गेटअप को देखकर ना सिर्फ प्रवीण जी बल्कि उस वक्त स्टूडियो में मौजूद हर शख्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उन्होंने नमस्कार करते हुए अपने स्वामी जी को एक्सेप्ट कर लिया। और जोशी साहब के इस रूप को देखकर किसी और ऑडिशन की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। फिल्म बनी, फिल्म बहुत ज्यादा हिट रही, हर रिकॉर्ड इस फिल्म ने तोड़ दिए। लोग चाहते थे कि इसका सीक्वल भी बने, पर जोशी जी की हेल्थ कंडीशंस देखते हुए डायरेक्टर प्रवीण जी ने उनसे कहा कि आप जब ठीक हो जाएंगे सीक्वल हम तभी बनाएंगे, लेकिन आपको हमें सीक्वल में रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या बात है, काम करे इंसान तो ऐसा करे कि उसके बगैर कोई काम हो ही ना पाए। फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, आप एंजॉय कीजिए ट्रैक्स को, वापस आकर अपने बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? ये मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देखकर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

कोई मिल गया। बिल्कुल जी, हमें आप मिल गए और आपको हम मिल गए और फिल्म इंडस्ट्री को मोहन जोशी जी मिल गए। और इसी के साथ स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी में आज हम मोहन जोशी जी की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ विलन अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर जब वो इस पहचान से पक चुके थे, उन्हें लगा कि मेरे अंदर और भी बहुत सारा टैलेंट है जो कि दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा, तो उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया और यहाँ आकर उन्हें कई खूबसूरत फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें से उनके करियर की बेस्ट फिल्म रही देउल बंद। और इसी फिल्म के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बता दिया कि भाई अभी मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। खैर, ऐसे ही करते करते इन्होंने काफी अच्छा काम किया। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि उस वक्त के सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी के साथ कभी काम करूंगा। और ये दोनों ही इतने हम्बल इंसान हैं जिनके साथ इन्होंने काम भी किया। जहां इन्होंने धर्मेंद्र साहब के साथ पूरी 19 फिल्में की, वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का इनका पहला एक्सपीरियंस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ रहा, वो भी बहुत ही खूबसूरत सी थी, जो कि इन्हें हुई थी टीनू आनंद डायरेक्टेड फिल्म मेजर साहब में। जब ये उस फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार अमिताभ बच्चन जी से मिले तो उन्हें देखकर ही ये उनके कायल हो गए और इन्होंने उनके असिस्टेंट से रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इस फिल्म में काम कर रहा हूं, तो मेरा इंट्रोडक्शन बिग बी से करवाइए। और जब बिग बी इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अब हम आपके साथ काम करेंगे। अब ये बोलने का अंदाज कुछ अलग था, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस बात को एक्सेप्ट किया वो कुछ अलग था। इन्हें ऐसा लगा कि बच्चन साहब इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो शायद इन्हें ठीक से जानते नहीं है कि ये कितना अच्छा काम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने इन्हें नीचे दिखाया और इसी बात को इन्होंने दिल में रख लिया। पर बाद में जब बिग बी को पता चला तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन देते हुए ये बात भी क्लियर की कि मेरा ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, लोग कहना कुछ चाहते हैं पर हम उसे किसी और ही तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, और क्योंकि हम पॉइंट्स को क्लेरिफाई नहीं करते इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे रिश्तों में भी दरार आ जाती है। फिलहाल वापस चलते हैं हमारे जोशी साहब की और, जिनकी दो और मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई थी। ये हमेशा से ही माधुरी दीक्षित और राजेश खन्ना साहब के साथ भी काम करना चाहते थे और इन दोनों के साथ काम करने का मौका भी इन्हें मिला। ना सिर्फ ये चार कलाकार बल्कि इन्होंने गोविंदा, सैफ, अक्षय, अजय देवगन, हर दौर के कलाकार के साथ इन्होंने काम किया, जिसके लिए फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें नेशनल अवार्ड, नाटक अकेडमी अवार्ड, स्क्रीन प्ले अवार्ड, विष्णुदास भव अवार्ड, ऐसे ना जाने कितने अवार्ड से नवाजा गया। अगर बॉलीवुड की बात करूं तो पूरे 250 से ज्यादा फिल्मों में हमने इन्हें देखा। सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, बल्कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी ये 70 प्लस फिल्मों में हमें नजर आए। साथ साथ ये हिंदी और मराठी टीवी सीरियल्स में भी अपनी प्रेजेंस बनाए हुए थे, और क्योंकि ये थिएटर को काफी ज्यादा पसंद करते थे तो अब तक ये पूरे 8000 से ज्यादा थिएटर प्लेज में भी अपनी प्रेजेंस मार्क करवा चुके हैं। अपने इस करियर से जोशी साहब ने ये साबित कर दिया कि अगर आपकी नीयत सही है और आप हार्ड वर्कर हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकती। और आज इस एपिसोड से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जोशी साहब को एक बार फिर से याद करें, उनके इतने शानदार करियर के लिए उन्हें सैल्यूट करें। आपको ये शो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और 2 घंटे आप सभी से बात करते करते कहाँ चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, और ऐसे ही हंसते खेलते मेरा आपसे विदा लेने का वक्त आ जाता है। तो चलिए आज भी मुझे दे दीजिए विदा, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे कहाँ, यही जहाँ मुझे सुनने आते हैं। क्या बात है, कितना बेसुरा गाया मैंने, लेकिन अब जो गाना मैं सुनाऊंगी वो बेसुरा नहीं होगा, वो पूरे सुर में होगा। तो आप एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। सो टाटा, बाय बाय, सायोनारा।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।
2: उम्र के साल कितने हैं, गिन गिन के क्या करना,
1: क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचें, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लौंडा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान इन टच जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी नाम।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
5: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
5: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
5: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
5: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
5: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
5: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
5: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो,

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: फर्जी रिश्तेदार, तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: तुम अभी इसे लायक।
0: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
0: बस मेरी शायरी सुन लो।
1: फिर
0: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन और आप

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी, जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली, तुम बोलते रहो।

0: के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बात।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए प्यार वाली नादानी
3: है। फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: जब का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।
1: भूल

0: मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुरैया मारे कील को मुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े
1: मुरैया मारे कील को मुरैया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: ना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: फाइनल थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इस बार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंगोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जा।
2: चलते वक्त भीड़ का रखें खास ध्यान, किसी लापरवाही से मत बनिए मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है जिम्मेदारी।
3: रेडियो मारने द्वार हित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: ये कोई बात है?
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं, हो वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मतवाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं, जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी? नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना। बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है, रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा, कुछ राधा नाम कार्यम हनुदिनी मिलतम साधना घीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग छवीली नागरी, वह बारंबार रटे रट राधा मंत्र को, उन मोह लिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा